नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने दी 13 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जुलाई महीने दी 4 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज की सभा के प्रोग्राम हुण शुरू होंगे ने।

FM बैंड 102.7 MHz से वेला हो रहा है प्रोग्राम वंदना नू सर्वन करन दा। आओ प्रोग्राम ते इस सफर दा आगाज करने मूल मंत्र दे नाल।

अगर कुछ मंगना है तो उस परमात्मा तो मंगो, क्योंकि परमात्मा तुहाडी चोली दे विच जरूर वो खैरात पा देंदा है जिसे तुसी सच्चे दिलों चाहत करदे हो। विश्वास दृढ़ हो जाता है जदों असी उस परमात्मा दे कोलों

जो बात दवा से हो न सके, जो बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिल जाए तब बात खुदा से होती है, तब बात खुदा से होती है।

FM-band 102.7 MHz से होने तुसी सर्वन कार्य से भक्ति रसी नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। FM-band 102.7 MHz से आकाशवाणी रेनबो दाए जलंधर केंद्र है। 7 बज रहे ने वेला हो रहा है FM न्यूज हेडलाइंस सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान अते गुजरात के दौरे ते होंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि उदों तक मुलतवी नहीं मुलतवी रहेगी जदों तक पाकिस्तान सरहद पारों दहशतगर्दी नूं अपनी हमायत बंद नहीं करता है। व्यापार अते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत एक ट्रिलियन डॉलर दे बरामद की चेतू प्राप्त कर रहा है। रक्षा खरीद कौंसल ने हथियारबंद फौजा की समर्था वधाउण लई 52,000 करोड़ रुपए दिया रक्षा खरीद तजवीज़ा नू मंजूरी दे दी है। सरकार ने ई रिक्शा दिया बैटरिया नू हैक करन लई वर्तिया जा रही ऐप्स नू गूगल प्ले स्टोर अते एप्पल ऐप स्टोर तो हटाउण दे आदेश दिते ने। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि सूबा सरकार ने मावां धीआं सत्कार योजना तहत खातियां च घट पैसे पा के पंजाब दीआं औरतां दे नाल धोखा कीता है।

0: एक छोटा सा प्रॉमिस कर लिए, ना ओवर स्पीड करांगे, ना रेड लाइट जंप करांगे, ना मोबाइल फोन वरतांगे, ते ना ही बेवजह पापा
1: बाजू।

बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग जलंधर, और गुड मॉर्निंग जलंधर दे सफर दे विच कौन है थोड़े नाल? थोड़ी दोस्त निशा, और निशा दे नाल तुसी खूबसूरत जिहा सफर तय कर रहे हो, और गल्लां जिहड़ियां आ हुणे असीं बढ़िया वधिया वधिया कीतियां सीगियां, हुण होर भी गल्लां जिहड़ियां बिल्कुल प्रोग्राम दे विच इसे तरह चलदियां रहणगियां और चलनगियां भी, क्योंकि जिन्नी देर तक तुसीं मेरियां गल्लां नहीं सुनोगे ना तो मैं क्या फिर मतलब कि गल जिहड़ी है वह फिर बनती नहीं है, है ना। चलो जी, गल करते हैं कि तुसी साडे बुजुर्गों के कोलों ना हमेशा कुछ ना कुछ जिहड़ा है सुनते रहने, असीं सारे सुनते रहने। तो बुजुर्गों की एक छोटी जी आदत होंदी सी, उन्हां दे पिछे छुपिया होया सी एक दिलचस्प हैल्थ साइंस। जे असीं गल करिए इस हैल्थ साइंस की, तो इस हैल्थ साइंस के विच ना सानू बहुत कुछ सीखन नू मिल सकता है, और नाल दे नाल एक रिच चीज़ जिहड़ी है वह साडे नाल जुड़ सकती है। बिल्कुल जी, तुहानू याद होएगा कि साडे दादा दादी जो नाना नानी ने सवेरे उठ के ना बासी जिहड़ी रोटी है, बासी रोटी मिठे दे नाल बड़े चाह दे नाल खांदे हुंदे सी। अजकल तो बासी रोटी का ना सुन के भी ना कई लोगों के नक मूँह जड़े आ सिकड़ जाते, रात की रोटी खानी है असी हूँ। पर एक समा सी जदों ये नाश्ता ताकत और चंगी सेहत की निशानी जी है वह मनिया जाता सी। रात भर जिहड़ी पई हुई रोटी हुंदी है ना उहदे विच हल्का फुल्का जिहड़ा है ना कह सकदे हां फर्स्टेंशन जिहड़ा है हो सकता है, फॉर्मेंटेशन जिहड़ी है वह हो सकती है, जिस दे नाल कुछ लाभदायक सूखम जीव जिहड़े है विकसित हो सकते ने। उधर ताज़ा मठा कुदरती जिहड़ा है कह सकदे हां प्रोबायोटिक्स का वधिया स्रोत जिहड़ा है वह मनिया जाता है, जे साडे पेट अते पाचन तंत्र नूं तंदुरुस्त रखन विच मदद करता है। एक कदों मदद करता है? जदों असीं बासी रोटी जिहड़ी है वह खाने हां। बासी रोटी ते मठा इकट्ठे खाने हां तां उहदे नाल साडे पेट दे जिहड़े चंगे बैक्टीरियाज हुंदे ने उहनूं वधाउण दे विच बहुत ज़्यादा हैल्प हुंदी है, बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुंदे ने। सेहतमंद जिहड़ियां साडियां आंतड़ियां हुंदियां ने, आंतां हुंदियां ने, भोजन विच मौजूद पोषक तत् नूं शरीर तक चंगी तरह पहुँचाउण दे विच उह मदद भी करदियां ने। ते हुण असीं गल करिए वाइटमिन B12 जिहदी डेफिशियंसी जिहड़ी है आम तौर ते साडे अंदर पाई जांदी है। कई लोग तां मनदे हन कि इस तरह दा रिवायती भोजन जिहड़ा आ B12 दी कमी जिहड़ी है उह होण ही नहीं सी दिंदा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। B12 ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ B12 ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ B12 ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ B12 ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ

FM बैंड 102.7 MHz से वेला हो रहा प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा ते आओ फिर आपां अड्डी भी थरकाईए ते टप्पा भी पाईए प्रोग्राम अड्डी टप्पा दी शुरुआत करने आ इस खूबसूरत गीत नाल।

बिल्कुल जी, दिल से दिल तक 102.7 FM रेनबो दे प्रोग्राम चल रहा है दिल अपना पंजाबी। और इस सिलसिले दे विच असीं गल कर रहे हैं कि आज बरसात दे मौसम दे नाल जुड़ियां होईयां यादां दी।

मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। ना ही उस दर्द को सहा जाता है, ना ही किसी को कहा जाता है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है। अखां दे विच्चों हंजू आउंदे ने और कदे कदे शब्द नहीं होंदे तकलीफ नूं बयान करन दे लई। बस दिल करदा है कोई समझ लवे, कोई संभाल लवे, कि कोई गल ना ला लवे। बिल्कुल जी, वाकई हर इंसान नूं एक इहो जिहे इंसान दी जरूर तलाश हुंदी है और जरूर साथ लभदी भी है जिहड़ा उहनूं समझ सके और उहनूं संभाल भी सके। और यह मैसेज साडे कोल आया है मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद अरमान पेन और खुद जिला मलेरकोटला तो। अगला मैसेज आ गया जी मेरे कोल, वेखने आ जी कौन कह रहे ने इस दिल दी दास्तान। लो जी सुनते हैं इस मैसेज नू प्रोग्राम दे विच, जिसका नाम है दिल अपना पंजाबी। और तुसी भी मैसेज कर सकते हो 9855101027। प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना खास कल दिवस नंबर ते अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस।

एक नया अवसर लेकर आती है अपनी गलतियों को सुधारने और सपनों को पूरा करने के लिए। दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम, हमारा प्यार भरा आदाब जी। और ये मैसेज आया है जी रघुबीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो और एलिसा नयाब और लड्डू। और अगला मैसेज सुनो, तो पहला अगला मैसेज पढ़ लो नया जी। आकाशवाणी जलंधर के 102.7 मेगाहर्ट्ज रेनबो पर निशा की आवाज़ का जादू और संगीत का संगम पंजाब की शाम को बेहद खूबसूरत बनाता है। हवा में गूंजती है जब उनकी प्यारी सी मुस्कान, 102.7 एफएम रेनबो पर छा जाती है एक नई जान। वाजीवा जलंधर की फिजाओं में घुल जाती है निशा की मीठी आवाज़, इन तरंगों के संग हर शाम लगती है जैसे कोई साग। और मैसेज है जी और सुशील कुमार पिंड बकारपुर तो मैसेज कर रहे हैं। और अगला मैसेज जरा है मलेरकोटला तो है जी, एक नंद ही अपनी माँ को समझा सकती है तो उस घर की बहू कभी दुखी नहीं हो सकती और ना ही कभी कोई घर बिगाड़ेगा। सोनू मलेरकोटला तो मैसेज कर रहे हैं, एक गरीब किसान का बेटा मिट्टी में खेलता हुआ बड़ा हुआ। लोग कहते हैं जिंदगी पर मिट्टी मिची रहेगा, लेकिन उसी मिट्टी ने उसने अपने सपने दी इमारत बना लेती। और एक दिन वही लोग उसकी सफलता नूं देख के सिर चुका लगे, सिख की मिलती है इस चीज़ तो। हालात छोटे ही हो सकते हैं लेकिन अपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए, लेकिन सारे सपने जड़े हैं वो कभी भी छोटे नहीं होने चाहिए। गुड मॉर्निंग निशा मैडम जी, गुड मॉर्निंग सूरज चौहान मैसेज कर रहे ने, तहसील देखो डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में। अर्ज किया है इरशाद ना इश्क की परवाह करें ना हुस्न की परवाह करें, ना इश्क की परवाह करें ना ही हुस्न की परवाह करें, ना इश्क की परवाह करें ना हुस्न की परवाह करें, यात्रियों अपने सामान की स्वयं ही रक्षा करें। अच्छा ये मैसेज यात्रियों से सीखा, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज चौहान जी, सबके चेहरे देते मुस्कुराहट लेके आंदे लिए नमस्कार जी। यशपाल जम्मू कश्मीर जिला जम्मू खड़ा बिल्ली पिंड सियूनी तो मैसेज आया है जी, और स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि ते उन्हां नूं सादर नमन करते हुए, रहे सलामत जिंदगी उनकी जो मेरी खुशी की फरियाद करते हैं, ये प्रभु उनकी जिंदगी खुशियों से भर देना जो मुझे याद करने के लिए अपना पल बर्बाद करते हैं। सत श्री अकाल जी, अज बरसात का जिक्र होया है तो असीं भी गल करांगे। बरसात का जिक्र होया तो कहिंदे ने कि इस नाल संबंधित एक कविता कड़ियाँ आईया तन जिहड़ा साडे कोल भेजिया ने मनजीत सिंह बंधन पिंड बद्दोवाला लुधियाणा तो, इन्होंने जी लिखा जी कणियां आईया निकिया निकिया कणियां आईया और बिरखा बूटियां ते रौनका छाइया, बिरखा बूटियां ते रौनका छाइया निकिया निकिया कणियां आईया। सोनू मिंटू बिल्ला होए इकट्ठे सारे, कणियां विच भिज भिज लैण नज़ारे, कुड़ियां दे रल किकलियां पाइया निकिया निकिया कणियां आईया। कमो प्रीति सुखी नूं भी सद लियाईया सारिया ने एक एक कश्ती बनाईया रंग बिरंगी लीका नाल सजाइया निकिया निकिया कणियां आईया। जिवें जिवें कणियां तेज मीह हो जाना, गलियां दे विच पानी पानी हो जाना, वेखियो जद किश्तियां दौड़ा लईयां निकिया निकिया कणियां आईया। बिजली लिशके बदल गरजन लगे, मापे सब तो झुड़कन वरजन लगे, आवाज़ लगाउण चाचियां ताइयां निकिया निकिया कणियां आईया। कहिंदे किसान नूं सौखा सा हो जाना फसलां ने हुण वादे दे राह हो जाना, घा चारे नाल रज्जन मज्जां गाइयां निकियां निकियां कणियां आईयां। हौली हौली इधर बदल आउण लगे, ठंडी ठंडी हवा दे बुल्ले लियाउण लगे, बोलो बदलो क्यों देरियां लगाइयां निकियां निकियां कणियां आईयां। अपनी मावां दी कोई गल ना सुने आखी जांदे ने सारे आ जांदे आ हुणे, मोरां ने भी तां बार ही पहला पाइयां निकियां निकियां कणियां आईयां, अंदरों आवे सारे हुण बेबी।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है गीत बहार। यस, गीत बहार प्रोग्राम जिद विच बहुत सारे पुराने 90s 20s दे गाने जिहड़े ने तुसी सुनदे हो। एंड अज सैटरडे वाइब्स जिंदा होया, वीकेंड वाइब्स जिंदा होया, ए गाना जो है सुन लो प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच। आरजे गरिमा है थोड़े नाल, स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।

0: caro, caro, caro.
1: जी बिल्कुल, दिल को रोकते हैं, दिल को टोकते हैं, पर दिल सुनता है क्या किसी की? ना जी ना, दिल ने ऐसा सीखा ही नहीं कि वो हमारी सुने। आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहे गीत बहार विद मी आरजे गरिमा। कितना खूबसूरत गाना सी है लीशा चन्नौई की आवाज़ दे विच, एंड हरसिंगर दी अपनी एक आवाज़, अपनी एक वाइब होंदी है, तो अपना एक जॉनर होंदा है गाने गाने का, गाने गाँदा। एंड जिवें कि सुनिधि चौहान शी इज़ वर्सटाइल, बट अलीशा चन्नौई इज़ ऑलसो वर्सटाइल, पर इस तरीके के जो गाने होंगे ना अलीशा चन्नौई की आवाज़ के बहुत फबदे है। एंड फिलहाल जी गाने अगे भी है बिकॉज प्रोग्राम का नाम गीत बहार है, आरजे गरिमा ऑन एफएम रेनबो।

तो कितना कितना ही एक्यूरेट बोला गया है ना इस गाने में. मोहब्बत तो हो जाती है, शरारत भी हो जाती है. फिलहाल प्रोग्राम गीत बहार भी आ जाता है रोज सुबह 10 से 11 बजे. और आज तो आपकी आरजे गरिमा भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ थी और आज भी इस प्रोग्राम में. वेल जी 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो ते गीत बहार प्रोग्राम दे विच तुसी गाना एंजॉय कीता. एंड ऑब्वियसली हीरो नंबर वन फिल्म तो एक गाना सी 1997 दी बॉलीवुड फिल्म हीरो नंबर वन जिदे विच सी करिश्मा कपूर एंड गोविंदा उदित नारायण एंड साधना सरगम दी आवाज दे विच गाना सी. बहुत ही रोमांटिक ए जो गाना है, बहुत ही रोमांटिक इस करके भी हो गया बिकॉज दे विजुअल्स जो ने वो बहुत अमेजिंग सी. आउटडोर शूटिंग सी, यूरोप दे विच शूट किए गए. बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज, बहुत ही स्नोई माउंट टेन्स जिहड़े ने स्विट्जरलैंड दे भी इस गाने विच दिखाए गए. एंड अपने है गाना जो है अपने आप विच इन्ना सुनन नूं ही चार्मिंग लगता है ते इन्नियां ब्यूटीफुल लोकेशन से शूट होया ते होर भी ज़्यादा सुपर चार्मिंग हो गया है गाना. एनीवेज फिलहाल अगले गाने वाला पर रुख करिए. आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार विद मी आर जे गरिमा. स्टे ट्यून्ड.

हाँ, इस पल की धुन को हमने एक्चुअली में बहुत ही चुपके से सुना इन प्रोग्राम गीत बहार आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम ऑफकोर्स गीत बहार दे विच गाना तुसी इंजॉय कीता फ्रॉम फिल्म मिशन कश्मीर तुहाडे नाल थोड़ी अपनी आरजे गरिमा सो दिस सॉन्ग उदित नारायण जी की आवाज दे विच एंड अलका याग्निक जी की आवाज दे विच ये गाना जो है ना सानू डायरेक्ट मतलब मैनू तो एक्चुअली डायरैक्ट लैके जाता है कश्मीर श्रीनगर के डल लेक से हाँ शिकारे दे विच इदा इट फील्स लाइक शिकारे ते बैठे हुए हैं एंड हल्की हल्की जी ए यू नो झील की जी फीलिंग है ना डल लेक की वो इस गाने दे विच बाखूबी झलकती है सो एनीवेज फिलहाल हर एक दी मूमेंट्स होंगे ने कुछ यादा होंदिया ने कि कोई गाने सानू इदा दे होंदे ने कि सानू एक पर्टिकुलर मूमेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पर्टिकुलर प्लेस से लै जाते हैं So this song is just love. All right, G. Moving on to the next track of the show. In program, Geet Bahar, agla gana tasi enjoy karoge. Because mujhe to tumse kuch kehna hai gaane the lyrics ne. And Geet Bahar program de vich RJ Karima de naal bane raho. Because ye gaana bahut kuch kahega. Thoda sa dance bhi karwayega. So enjoy.

ले, गाना भी खत्म हो गया और किसी ने किसी को कुछ कहा भी नहीं, बस डांस कर लिया। आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहे गीत बाहर विद मी आरजे गरिमा। 2000 ईयर दी एक फिल्म, यू नो, हद कर दी आपने, उदा सुपर हिट गाना तो सी फिलहाल एंजॉय किया है। हद कर दी आपने इहदे विच सी गोविंदा एंड रानी मुखर्जी। सो ओ दौर सीगा जदों गोविंदा ते रानी मुखर्जी दियां दी जिहड़ी है मूवी जदों आई सी उदों काफ़ी ज़्यादा रूमर सीगियां, कॉन्ट्रोवर्सीज सीगियां, एक्चुअली ज़्यादा रूमर सीगियां कि गोविंदा एंड रानी मुखर्जी दे विच कुछ कुछ चल रहा है। सो यह गल जिहड़ी है गोविंदा दी वाइफ सुनीता नूं बहुत बहुत ज़्यादा खटकदी सी, इस करके सुनीता सुनन विच आया है कि उदों अपने बच्चियां नूं लै के अपने मतलब दूसरे घर कितने शिफ्ट हो गए थे, अपने पेके चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। बट बाद विच दोनों विच गोविंदा एंड सुनीता विच पैचअप हो गया, बिकॉज शायद सुनीता नूं सिर्फ गलत फहमी सी कि गोविंदा ते रानी मुखर्जी विच कुछ कुछ चल रहा है। फिलहाल सुनीता नूं आपां देख सकते हैं लॉकअप सीजन दा, लॉकअप जिहड़ा रियालिटी शो है उहदा जिहड़ा सीजन है उहदे विच सुनीता नूं आपां देख सकते हैं गोविंदा दी वाइफ नूं। फिलहाल जी आपां सुनांगे तुहाडे अपने प्रोग्राम गीत बहार दे विच अगला गाना Only on 102.7 MHz आकाशवाणी FM Rainbow। दिल तो करता है कि गीत बहार प्रोग्राम खत्म ही ना होवे, पर करीदियां सुईयां कह रही ने कुछ 7-8 मिनट रह गए ने, उस तो बाद आपा प्रोग्राम पंजाबी तड़का की भी शुरुआत करनी है, इस करके कुछ एक दो गाने होर इंजॉय कर लिए इन दिस प्रोग्राम। सो स्टे ट्यून्ड टू FM Rainbow।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा पंजाबी तड़का। हेलो
1: हेलो मैडम जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैडम जी सन्नी भगत बोल रहे, भारत कैंपस जलंधर तो जी।
0: हाँ जी, की हाल चाल सन्नी जी?
1: बहुत वधिया मैडम जी, 3 महीने बाद तुहाडे नाल गल हो रही है।
0: अच्छा जी, मेनू तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन पहले ही गल हुई सी शायद।
1: नहीं मैडम जी, 3 महीने बाद तुहाडे नाल गल हो रही
0: है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत वधिया। पुरानी कहावत सी, पता नहीं एदा हुंदा है कि नहीं हुंदा, पर मेरी दादी जी कहंदे हुंदे सीगे,
1: काणा मीह पै रहा है।
0: हां हां, नहीं कहंदे सीगे जो धुप विच मीह आंदा सी ना, ते मेरी दादी जी कह रही सी किसे किते जगह हिरन ते हिरनी दा व्याह हो रहा है, इस करके धुप दे विच बारिश आ रही है।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी,
0: मतलब आई डोंट नो, एक कहावत बुजुर्गों तो ही आई है, पर कहानी बनाई है या जो भी है, पर मेरी दादी जी कहते हुए थे कल ऐदा ही होया सी, धुप विच बारिश आ गई, मैं कहा ओ हो कि हिरन ते हिरनी दा व्याह हो रहा है, सारे हसन लग गए। फिर
1: बिलकुल
0: बिलकुल, होर सुनाओ सुनी जी।
1: प्रोग्राम भी इंजॉय करांगे।
0: हां ओ तां है, गर्मी होवे सर्दी होवे बारिश होवे, प्रोग्राम्स तां इंजॉय करने ही करने हैं आकाशवाणी दे। सो गाना कैसा सुनना है तुसी सनी जी?
1: गाना मैं गुरदास मान जी दा सुना दियो, मामला गड़बड़ फिल्म दा, कोई भी सुना दे।
0: ठीक है सनी जी, थैंक यू सो मच कॉल करने लई।
1: शुक्रिया मैडम जी।
0: ऑलराइट जी, प्रोग्राम तुहाडा अपना पंजाबी तड़का, इहदे विच अगला गाना तुसी इंजॉय करोगे, ते तुसी प्रोग्राम दे विच कॉल लगा सकदे हो 2342-1174, ते अज 11:30 बजे

0: मामला धड़फड़ है, मामला धड़फड़ है।
1: 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहे थोड़ा अपना पंजाबी तड़का। हेलो
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
2: मैडम राजकुमार शर्मा लुधियाना तो बोल रहे हैं जी।
1: हो राजकुमार जी, की हाल ने लुधियाने वालियां दे, लुधियाने दे?
2: मैडम थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है, बदलबाजी हुई है।
1: लुधियाने भी? वाह जी वाह।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: ठीक है। हो सुनाओ राजकुमार जी, केड़ा गाना सुनोगे?
2: गाना जी हरभजन मान दा गल्ला गोलियां विच टोए,
1: असि मार गए नी ओए होए
2: होए होए।
1: ठीक है जी, ओए होए गाने
2: तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया पेश कर रहे हैं।
1: हां
2: ते बहुत एंजॉय हो रहा वा, ते परमात्मा सानू

सा दुनिया ते सत्तर या करिए जिसने फरमाया आस वाली मोर न खाली जो तेरे दरियाया पाक खानल करी।

0: मोरनी बनके।
1: बस नेहा कक्कड़ दा हासा सुन लो गाने दे एंड दे विच, मतलब पता लग जांदा है कि नेहा कक्कड़ ने अपना ठप्पा लगा दिता होया एक बार नहीं 10 बार, ये तो गाना मेरा ही है। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्यारे गाने दिते ने नेहा कक्कड़ ने, सारे वेडिंग सॉन्ग्स जिहदे उत्ते आपां अज वी थिरकदे आं डांस करदे आं। सो एनीवेज आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा होम स्वीट होम विद मी आरजे गरिमा। यू नो वट मी पे तो चा पकौड़ियां दा दिल जिहड़ा है ना वह हर एक नूं तरसदा है, पर उत्थे ही पेट कहिंदा है भई मेरा भी सोच लिया थोड़ा जिहा, हुणे तां रोटी खाधी है हुण शाबी मी आ गया जेकर तो पकौड़े खाना जरूरी है। सो एनीवेज बरसात के दिनों में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो नमी करके बैक्टीरिया ते फंगस बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सो ये जिन्ना हो सके बिल्कुल फ्रैश ते गर्म गर्म खाना ही खाओ, फ्रिज विच पिया बासी खाना उन्हों बार बार गर्म करके खाण तो बचो, ते जे सैलड या फ्रूट्स हैगे ने तां पहलां उन्हां नूं चंगी तरीके नाल वॉश करना बहुत जरूरी है, ते यू नो बाहर कट्टे हुए जिहड़े फल ने या खुला जिहड़ा स्ट्रीट फूड है इन्हां नूं मौसम च थोड़ी छुट्टी दे दिओ, बिल्कुल छुट्टी दे दिओ, एक्चुअली थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। सो पानी भी साफ ते फिल्टर कीता होया पीओ, एंड जे बाहर जा रहे हो तो अपनी पानी की बॉटल जरूर नाल लैके जाओ। सो इस मौसम दे विच दाल खिचड़ी सूप ते हल्का फुल्का घरेलू जिहड़ा खाना है ना तुहाडी बॉडी का सब तो वधिया दोस्त जिहड़ा है बन सकता है, बिकॉज एक तो वैसे ही इन्नी ज़्यादा गर्मी है इन्नी मॉइस्चर दे विच किचन दे विच बहुत हैवी हैवी जिहड़ा फूड है ना गर्मियां दे विच वो बनाना भी मुश्किल हुंदा है ते उहनूं डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हुंदा है, मतलब काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं डाइजेस्ट हुंदे साडी जिहड़ी बॉडी है गर्म हो जाती है जो फूड इन्ना हैवी फूड डाइजेस्ट हो रहा होंगे। तो सो येस ऑफकोर्स दुध दही या जो ब्रैड है इन्हों चीज़ों यूज़ करने तो पहला एक बारी जो यदि एक्सपायरी डेट है जरूर देख लिया करो, 2 सैकेंड की यह जी आदत है ना यह कई दिन की परेशानी तो सूँ बचा सकती है। सो जो मीह पै रहे हो मज़ा भी लो बारिश का, इंजॉय एट, तुम गेड़ी तो जाओ कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं है, पर अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखो बिकॉज घर उदों ही होम स्वीट होम बनता है जो सारे के सारे तंदुरुस्त हो एंड बारिश में भी इंजॉय कर रहे हो। ओके सो आने वाले दिनों जी बारिशा हो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड फिलहाल बारिश की गल हुई है तो फिर बारिश का गाना सुन लें। आकाशवाणी एफ एम रेनबो से बने रहो आरजे गरिमा के नाल, मैं थोड़ी जी ठंडक पेगी इस गाने नूं सुन के इन गर्मी च। स्टे ट्यून टू एफ एम रेनबो, प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम।

What a lovely voice of Arijit Singh, यार. मतलब गाने दे विच इंसान डुब जाता है, दिल करता है डुबे ही रहिए, है ना. आकाशवाणी FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी, तुहाडा अपना होम स्वीट होम, तुहाडी अपनी RJ गरिमा दे नाल. सो लेडीज एंड ओनली लेडीज, जे सवेरे उठदे ही लगे कि हले तो उठी हाँ, फिर भी इन्नी ज़्यादा थकावट क्यों हो रही है, तो हो सकता है कि सिर्फ काम का नहीं हॉर्मोन्स का भी मामला होवे. काम करना तो औखा है इस गर्मी के मौसम में, फिर भी आप करते रहने, अपने आप को खिंच के हर कोई करता है, नॉट इवन लेडीज, मैन भी करते रहे, है ना. पर कई बार की होंगे लेडी के जो हॉर्मोन्स होंगे ने भी काफ़ी गड़बड़ी कर देते हैं. सो कई जो वुमेन है हॉर्मोनल इम्बैलेंस करके

देख देखते आजकल ये मुटियारा एकदम फर्शी सलवार सूट गर्ल हो चुकी ने। आई मीन इन्नी तरीके दे फर्शी सलवार सूट जिहड़े ने मार्केट विच आए हुए ने, कॉटन तो लैके पार्टी वेयर तक हर तरीके दे उपलब्ध ने। ईवन ऑनलाइन इन्ने नहीं मिलते पर जो तुसी लोकल मार्केट से जाओ तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऑनलाइन भी मिलते हैं पर वो काफ़ी पार्टी वेयर मिलते हैं या फिर बिल्कुल सिंपल मिलते हैं। एंड बेसिकली थोड़ा एक्सप्लोर करना पैंता है पर डेफिनेटली यू विल एक्सप्लोर मार्केट, तो तुहानूं बहुत ज़्यादा वरायटी जी है फर्शी सलवार सूट की डेफिनेटली मिल जाएगी। ओके एंड रेडी टू वेयर साड़ीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मतलब एक तो होंगे साड़ी कि मतलब सारे पंजाब के साड़ी कोई ओकेजन है, कोई विआह शादी आप उत्थे पाने, आप नॉर्मली नहीं पाते जिमें कि दूसरी स्टेट्स लोग पाते हैं, पर अजकल जो रेडी टू वेयर साड़ीज का ट्रेंड है ना वो इन्ना मतलब सॉर्टिड करती है ना लेडीज जिंदगी साड़ी को लैके कि मतलब रेडी टू वेयर साड़ीज मार्केट के सू एदा भी नहीं करना पैना कि साड़ी लीए तो आप किसी को तैयार कराइए, सीती सताई साड़ी जी है सू ऑनलाइन मिल जाती है मार्केट के मिल जाती है, मतलब ना प्लीट्स बनाउन की टेंशन ना सेफ्टी पिन्स की झंझट, बस पाओ तो तैयार हो जाओ झटपट फटाफट जिमें कि कोई कुर्ती पाई है जस्ट लाइक दैट, जिमें कि कोई फटाफट लहंगा चोली पाई है इस तरीके साड़ी जो है वो रेडी टू वेयर मार्केट तो मिलती एकदम सीती सताई। ओके एंड साड़ी भी कह रही है कि मतलब मैं भी हूँ मॉडर्न हो गई हाँ जी। सो ब्लाउजेस की गल करिए अजकल बैकलैस डीप नैक बोटाई हॉल्टर नैक तो स्लीवलैस डिजाइनस काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली तुम कोई भी ब्लाउज सिलवा सकते हो। एंड जेकर तुम लगता कि काफ़ी फ्लफी हो, देखो ओवरवेट कहना चंगा नहीं लगता, काफ़ी फ्लफी हो तो तुम स्वीट नैक भी स्वीट नैक ब्लाउज भी बनवा सकते हो, वो थोड़ी पतली लुक आती है कि मतलब जिमें आप थोड़े स्लिम हाँ, मतलब 5 किलो वेट अपने आप घट जाता है स्वीट नैक ब्लाउज आप जो सिलवाइए तो, एंड स्पैशली जॉर्जेट की साड़ी वेयर करिए वैसे ही 5-6 किलो इंसान तक हटा देती है जॉर्जेट की साड़ी, पर चलो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस करके कॉटन की रेडी टू वेयर साड़ी ज़्यादा जो लेडीज़ ने वो लेना पसंद कर रही ने। सो डिपेंड करता है जो तुम तो साड़ी पाना पसंद है तो एकदम सीती सताई जो साड़ी है ऑनलाइन बहुत ही ईजीली अजकल मिल जाती ने। ओके सो एनीवेज इस तो इलावा स्ट्रेट कट सूट्स जोड़े ने वो भी बहुत ज़्यादा इन है, कॉर्ड सैट्स ना सुपर इन है, मतलब कोई झंझट नहीं फटाफट कॉर्ड सैट्स पा के आप कि भी काम से जाना है आप जा सकते हैं। एंड यू नो जो आप शेड्स की गल करिए पेस्टल शेड्स फ्लोरल प्रिंट्स ते चिकनकारी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं अजकल, चिकनकारी कुर्ते चिकनकारी सूट्स फ्लोरल प्रिंट सूट्स। एंड जो गल करिए आप मेकअप की तो बहुत ही घट मेकअप मिनिमल मेकअप का फैशन है अजकल, मीनस जो आप लिपस्टिक जो है या फिर कोई भी किसी भी तरीके का मेकअप है एकदम न्यूड मेकअप है जो है ना उही ट्रेंड करता पाया, स्पैशली न्यूड लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड के ने। ते जे तो हानु लगता है तुहाडी कंप्लेक्शन ते जो न्यूड लिपस्टिक है बहुत ज़्यादा डल लगेगी तो फिर बिल्कुल सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक तुसी लगा सकते हो, बिकॉज सॉफ्ट पिंक जो लिपस्टिक्स है या सॉफ्ट पिंक मेकअप का भी अजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, ईदर न्यूड और सॉफ्ट मेकअप सॉफ्ट पिंक मेकअप। सो दिस इज एक्चुअली द मेकअप ट्रेंड गोइंग ऑन। एंड ऑफकोर्स थोड़े जे हैवी दुपट्टा तो स्टेटमेंट एयरिंग्स ने ना वो भी थोड़ी किसी भी लुक नू बहुत ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। ओके सो अजकल का फैशन कहता है लैस इज मोर, पर एक गल याद जरूर रखो हर ट्रेंड जो है ना हर किसी के लिए नहीं होता है, कपड़ा ओ पाओ ज्वेलरी ओ पाओ मेकअप ओ कैरी करो जो थोड़ी परसनैलिटी तो कंफर्ट के मौके के हिसाब के नाल होवे, बिकॉज असली जरा स्टाइल है ना वो ब्रांड या ट्रेंड नहीं होता है, मुस्कुराहट तो कॉन्फिडेंस के नाल जरा है ना असली ट्रेंड बनता है। ठीक है सो जी ट्रेंड्स नू फॉलो करो पर अपनी पहचान बिल्कुल नहीं भूलनी। ऑलराइट फिलहाल अगला गाना जो है वो आप इंजॉय कर दिया आतिफ असलम एंड अलका दी आवाज दे विच बाखुदा तुम ही हो, आकाशवाणी एफएम रेनबो ते होम स्वीट होम प्रोग्राम चल रहा है विद मी आरजे गरिमा।

हाँ जी, तुम ही हो अपने घर की सेलिब्रिटी, तुम ही हो, क्योंकि तुहाडे बगैर तां सरदा ही नहीं घर दे विच। ओह गल वखरी है, लोकी मानदे नहीं पर सानू तां पता ही है ना। आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम विद मी आरजे गरिमा। सो जिवें कि हमेशा ही गल आपां करदे आं कि वूमेन नू फाइनैशली डिपेंडेंट होना चाहिए है, एंड इन केस जे वूमेन फाइनैंशली इनडिपेंडेंट होना चाहिए है, तो जे कोई इनडिपेंडेंट होना चाहती है फाइनैंशली वूमेन, तो वह अपने हुनर का प्रयोग करके हो सकती है या फिर कोई ना कोई स्किल जो है एक्वायर कर सकती है, ताकि वह अपनी फाइनैंसिस के मामले में किसी के उत्ते भी डिपेंडेंट ना हो। सो जी, अज आप गल करांगे नेल आर्टिस्ट की। यस, नेल आर्टिस्ट ए टाइम वह है जो सारे यही पुछते ने कि नेल्स से

मतलब बहुत सोना जहा डिजाइन पवाया है, कितों पवाया है। ए ओ टाइम है कि मतलब सिर्फ नेल पेंट लगा के काम नहीं चलता। अज कल वुमेन आर लाइक कि मतलब उन्होंने जो नेल्स ने वो डन होने चाहिए ने प्रॉपरली, बिकॉज नेल दे उत्ते प्रॉपर आर्ट वर्क जरा है वो होना चाहिए है। नेल एक्सटेंशन जो ने वो बनवादियां ने लेडीज, एंड स्पैशली जो तो इंस्टाग्राम पर लेडीज ने गर्ल्स ने या स्पैशली इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोज़ बनानिया शुरू की ना, वो अपने नेल्स फ्लॉन्ट कर करके दिखादियां ने गल करते कि देखो आप नेल्स अपने डन करवाए हुए ने। सो इस करके नेल आर्टिस्ट का जरा काम है फिर वध गया बहुत ज़्यादा। सो अजकल बहुत ज़्यादा इन है डिमांड के हैगा ही हैगा है। ओके सो ब्यूटी इंडस्ट्री के बहुत ही तेजी वधदा होया नेल आर्ट का काम हैगा है, बहुत ही उम्दा करियर हैगा है। कमाई की गल करिए तो शुरुआत के एक क्लाइंट तो कुछ 100 रुपए लै सकते हो या 300 रुपए लै सकते हो, जिवें जिवें थोड़ी स्किल जी वधदी है, तजुर्बा वधदा है, तुहाडी डिजाइनस की क्वालिटी वधदी है, उदा उदा तुहाडी फीस भी वधदी चली जाती है। 500 to 1000, 1000 to 1500 एंड दैन सो ऑन। सो त्यौहारों के विआह के पार्टी सीजन के काम होर भी ज़्यादा वध जाता है। एंड अजकल ज़्यादा कोई ओकेजन ना भी हो फिर भी नेल एक्सटेंशन का काम बहुत ज़्यादा इन है, बिकॉज क्योंकि की है ना अपने आप शेप बनाना, नेल्स नू फाइल करना, फिर नेल्स नू वड्डा करना, ऐ अजकल गर्ल्स नू हुंदा है थोड़ा इंस्टेंट काम चाहिए हुंदा है। सो नेल्स एक्सटेंशन डन करा के वो अपना काम कर लेंदियां ने। रोजमर्रा की जिंदगी दे विच भी कोई इवेंट नहीं भी है ऑफकोर्स उन्होंने नेल्स एक्सटेंड करवाने ने, एंड इन केस नेल्स एक्सटेंड नहीं भी करवाने, एक्सटेंशन नहीं भी लगवानिया, तो सिंपल नेल्स के उत्ते भी आर्टवर्क जो है अजकल गर्ल्स नू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। 500 रुपए आराम नाल खर्च लेंदियां ने गर्ल्स हर महीने हर हफ्ते भी अपने नेल आर्ट करवाने लिए। सो वाई नॉट जे तुहाडे हाथ दे विच इदां दा हुनर है, तुहानू इंडस्ट्री अट्रैक्ट करदी पई है, एंड इन केस तुहानू लगता है कि तुसीं काम बहुत ही एक पैशन दे नाल कर सकते हो, तो फिर यह काम यह करियर तुहाडे लिए बहुत बहुत ज़्यादा एप्ट हैगा है। सो बेसिकली तुसी घरों भी काम कर सकते हो, जे घरों काम करोगे तो खर्चा तो घट जाता है, तुहानू प्रॉपर अपना स्टूडियो नहीं बनाना पैंदा, मतलब घर दे विच ही स्टूडियो बन सकता है, बाहर किते प्रॉपर्टी लैके या कोई ऑफिस लैके खर्चा नहीं करना पैंदा, तुसी घर दे कोने ते छोटा जिहा अपना स्टूडियो जिहड़ा है वो बना सकते हो नेल आर्ट दा, एंड बचत भी जी इदा वध हो जाएगी। बाद विच तुसी अपना स्टूडियो वधिया वाला खोलो किते बाहर, तो उत्थे अपने अंडर स्टाफ भी रख सकते हो। तो अजकल कई नेल आर्टिस्ट जिहड़े ने वर्कशॉप्स लैंदे ने, ऑनलाइन क्लासेस अजकल बहुत ज़्यादा नेल आर्ट दियां, वैसे तो यह एक हाथ की सफाई का काम है, इस करके तुसी ऑफलाइन क्लासेस लो कितों भी प्रॉपरली जाके, ता ही बहुत एक तुहाडे हत्थां विच हुनर जरा है वो ग्रो करेगा। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी लोग लगाते हैं, एंड अपने जो नेल्स के प्रोडक्ट भी जो तुसी यू नो मुकाम पर पहुँच जाओगे, अपने नेल्स के परसनलाइज प्रोडक्ट्स भी जो ने वेच सकते हो, मतलब कमाई के रस्ते एक नहीं अनेक हो जाते हैं फिर उस तो बाद। पर एक गल याद रखो, इस फील्ड के सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं काम आता, क्रिएटिविटी जिहड़ी है ना वो ज़्यादा विकती है। ऑल राइट, किन्ना फाइन तुसीं वर्क किया है वो ज़्यादा विकता है। सो हर नवा जो डिज़ाइन है ना तो हानू भीड़ तो वक्खरा बनाउंदा है, दैट मीनस कि तुसीं बहुत छेती ग्रो करोगे इंडस्ट्री दे विच। सो जेकर हुनर हैगा है, शौक हैगा है, वधिया करियर इस बन सकता है, तुसीं बन सकते हो रियल आर्टिस्ट, बिकॉज कई बार ना एक छोटी जी जिहड़ी कह सकते हैं कि एक बिगनिंग है ना, वड्डे वड्डे सुपनियां नू एक रंग जो है दे सकती है। ओके प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच फिलहाल अज आपां बहुत सारी गल्लां कीतियां ने, पर गाने जिहड़े ने आपां वो भी बहुत सारे सुने ने। सो चलो प्रोग्राम दा लास्ट जो गाना है वो आपां सुनिए, क्योंकि जो वुमेन है हर वुमेन फाइनैंशियली इनडिपेंडेंट होएगी, मतलब आप पैसे कमाएगी तो आप अपने लिए जोड़ेगी, अपना खर्चा भी करेगी, तो उसके विच आएगा कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर बस मौजा ही मौजा। सो ऐसे गल ते गाना इंजॉय करो, एंड स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो, RJ गरिमा है तुहाडे नाल।

वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम. आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना मिड डे मेलोडीज विद मी आरजे गरिमा. सो क्या ही खूबी बखूबी एक गाना जरा लिखा हुआ है, बिकॉज इन दिस मूवी जीनत तमान नो पूरा अप्सरा, मतलब एक्चुअली नॉट इन द फिल्म पर इस गाने दे विच जो एक इमेजिनेशन है एक्टर दी, जीनत तमान नो प्रॉपर अप्सरा एंड संगीती देवी एंड पता नहीं की बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन जो है किया हुआ है. एंड सुने ही बहुत लग रही थी जीनत तमान इन दिस यू नो सॉन्ग. बाकी मूवी का कॉन्सेप्ट था बहुत ही डिफरेंट सीगा, सबनों पता है, पर जिस तरीके नाल भी किसी भी एक्ट्रेस नू बहुत ही ब्यूटीफुल जो दसना हुंदा सीगा ते उस टाइम बहुत ही अलग अलग बहुत ही डीप वोकैब जिहड़ी यूज की जाती सीगी, ते जिस तरीके मतलब जो एक करैक्टर है एक फीमेल नू किस तरीके नाल प्रॉपर अप्सरा की तरह डिफाइन किया जाता सीगा, उहदा एक होर एग्जाम्पल आपां सुनांगे, बिकॉज गाने का नाम है ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल. सो किशोर दा गाना एक और इंजॉय कर लिए. स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो मिड डे मेलोडीज विद आरजे गरिमा बनी हुई है थोड़े नाल.

0: दिया।
1: मैं और कितना चल के आऊं, मैं तो सुबह 10 बजे की बैठी हुई हूँ आपकी अपनी आरजे गरिमा। मैं तो इतनी यहाँ भाई आरजे गरिमा तरह तो से इंजॉय कर रही हूँ प्रोग्राम तो हाँ अपना मिड डे मेलोडीज ऑन यॉन एफएम रेनबो। सो ए ओ गाना तो से इंजॉय किया जिस तो बाद राजेश खन्ना।

0: जैसे दीपक की हवा को चीर दे होया पलां से तेरे वीरा तो कोई हाथ दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन रहे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ फुला देवे।

हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी कर देखते हैं। हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी के देखते हैं। नींद पिछली सदी से जख्मी है, ख्वाब अगली सदी के देखते हैं। रोज हम इस अंधेरी धुंध के पार काफिले रोशनी के देखते हैं। बारिशों से तो प्यास बुझती नहीं, आइए जहर पी के देखते हैं। हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी के देखते हैं। राहत इंदौरी साहब दी गजल है। प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है। तुसी बने हुए हो FM रेनबो ते 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

चाक जिगर के जी लेते हैं, सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं। जगजीत सिंह की आवाज़ दे सुन रहे थे गज़ल। प्रोग्राम द लाज शायर है, दे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए ने जी। और उन्होंने मैसेजेस नूं असीं शामिल करना शुरू करते हैं जी। सब तो पहला मैसेज आया है प्रेम मार्केट बठिंडा तो अमरजीत जस्सल दा। इन्होंने बहुत सोहनी शायरी सानू भेजी है कि गिन तो लेते हैं उंगलियों पे गुनाह, गिन तो लेते हैं उंगलियों पे गुनाह, रहमतों का हिसाब कौन करे। एक होर शायरी भेजी है कि ए दुखड़ा भी सह जाना वा तेरे बाजों रह जाना वा, तेरे दिल दी जद मैं कहना कह के माड़ा पै जाना वा, जद तू मेरे वल नहीं ना वेंदी मैं फिर वेंदा रह जाना वा, अगे जाके छड़ दी तेरी मैं फिर इत्थे बह जाना वा, तेनू जे मैं भारा लगदा तेरे दिल तू लै जाना वा। ये शायरी भेजी है जी सोनू मलेरकोटला तो। बहुत सोहनी शायरी पंजाबी दे विच इन्होंने भेजी है। वो भी बहुत सारे मैसेजेस साढ़े तक पहुँच रहे हैं। बठिंडा तो बसंत सिंह टेलर ते लवदीप सिंह जस्सल ने मैसेज भेजा है कि सज्जन आए आ कि मुड़ गए साडा दिल तक के दिल भरिया ना, ऐसी रही मुलाकात साडी असी दिल दी गल ना आख सके, ओही कुछ बोल के कहिंदे उन्हां तो भी सरिया ना, अख सज्जन दी ना सानू पढ़नी आई साडी अख नू उन्हां ने भी पढ़िया ना, चुप चपीते उठ के तुर गए सज्जन हथ जस्सल ने भी फड़िया ना। सो तुसी भी अपनी लिखी हुई शायरी या फिर जो भी शेर तुहानू पसंद ने किसी किताब दे विचो तुसी सानू भेज सकते हो। नंबर है जी 9855 10 10 27 9855 1010027। मैं हाँ थोड़े दोस्त कुसुम थोड़े नाल।

0: दोस्तों मैं अपने साथियों को
1: हाजिर हो वाजिर हो
2: सुनते रहो
1: 102.7 FM
2: रेनबो
1: लाइव है तो लाइव।

0: Iwan, halo.
1: फूलों की जब चाह मुझे थी तब कांटे भी नहीं मिले, जब शशि की थी चाह मुझे तब जुगनू भी ना कहीं निकले। आशा और निराशा सब कुछ खो में जग में घूम रहा, अब पग पग पर मिलते मुझको क्यों ये इतने फूल खिले।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपको सेहतमंद बनाए रखने का संकल्प है हमारा। इसी प्रयास में हमारा आज का विषय है अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। आपको जानकारी दे दें कि विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मानसिंह, ईएनटी स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर सीजीएचएस न्यू दिल्ली। स्वागत करती हूं अपने दोनों

0: विशेषज्ञों का। डॉक्टर अजीत मानसिंह सर और डॉक्टर रेहान सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: जी डॉक्टर अजीत सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अस्थमा क्या है और अस्थमा किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है?
1: अस्थमा ज्यादातर छाती की परेशानी है, जहाँ छाती बाहर के प्रदूषण और जो ट्रिगर फैक्टर कहते हैं उससे ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं, तो सांस के रास्ते जो हैं वो सुकड़ जाते हैं
0: जी।
1: तो पूरी तरह छाती में हवा नहीं जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है
0: जी। बहुत सारे सवाल हैं अभी हमारे पास और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस समय गीत हम सुनेंगे जो डॉक्टर रेहान सर ने ऑफलाइन मुझे बताया था। चलिए सुनते हैं।

0: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा पर, और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या है सवाल। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी अपना नाम बताएं सर।
1: जी रविंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी रविंद्र जी क्या जानना चाहते हैं आप?
1: जानकारी चाहिए मैम, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, प्रेजेंट में है भी, सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आ जाती है, खांसी आती है तो सीने में तो हल्का फुल्का जकड़न होता है, लेकिन जब खांसी तेज आती है तो पीछे की जो पसलियां की हड्डियां हैं उनमें दर्द होने लगता है, तो क्या कारण हो सकता है?
0: क्या कारण हो सकता है आप ये जानना चाहते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा,
2: जैसा कि आप बता रहे हैं बार बार खांसी लेने से आपको दर्द हो रहा है। देखिए, जब आप बार बार खांसते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, तो उसी वजह से दर्द होता है। तो जैसे अगर आप खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द भी चला जाएगा।
1: जी, यानी वैसे और कोई लक्षण तो नहीं सर ना?
2: नहीं, देखो अस्थमा के मेन लक्षण ये होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी जैसी आवाज आती है।
1: नहीं ऐसा तो नहीं।
2: हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पहले अभी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि खांसी को अभी कंट्रोल कीजिए।
0: जी, थोड़ी सी एहतियात बरतें, मौसम बदलने का भी असर हो सकता है, और बाकी लक्षण तो आपको बता ही दिए हैं और आगे भी हम चर्चा करेंगे, तो प्रोग्राम गौर से सुनते रहें, हम अपने सभी श्रोताओं से यही करेंगे। डॉक्टर रेहान सर, आपसे एक सवाल मेरा अब ये है कि अस्थमा होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों को जरा से इस मौसम में खांसी जुकाम होता है तो ये लगने लगता है कि कहीं बीमारी तो नहीं कोई है ये।
2: देखिए, अस्थमा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एक होता है इंट्रिंसिक।
0: जी,
2: जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो मेनली एलर्जेंस के कारण होता है, जैसे डस्ट हो गया, धुआं हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये मेनली बच्चों में होता है, लेकिन ये टाइम के साथ ठीक होने लगता है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है वो मेनली बड़ों में होता है, एडोलसेंस के बाद होता है
0: जी।
2: और ये मेनली इन्फेक्शंस के कारण होता है, लेकिन ये जहां तक रहता है थोड़ा लाइफ लॉन्ग चलता है ये अस्थमा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो कंट्रोल रहती है चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं
0: जी। और ट्रीटमेंट क्या होगा आगे आपसे जानेंगे। डॉक्टर अजीत सर, आपसे सवाल है मेरा कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं?
3: अस्थमा के सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि खांसी होती है, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर सांस बाहर निकालने में तकलीफ ज्यादा होती है, अंदर फिर भी लेते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी की आवाज बनती है।
0: अच्छा।
3: कई बारी तो ये सीटी की आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास के लोगों को भी सुनाई देती है, पर मरीज यही कहता है कि सीटी की आवाज है, और ये परेशानी रात को जब लेटे होते हैं तो और खराब हो जाती है।
0: तो ये कहा जा सकता है कि रात में या दिन में अस्थमा ज्यादा अटैक करता है, ऐसा कहा जा सकता है? बताएं अजीत सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
3: अस्थमा के लक्षण और जो सांस लेने में तकलीफ होती है ज्यादातर रात को ही होती है, क्योंकि जब आदमी लेटा होता है तब हवा कम जाती है फेफड़ों में। तो दिन में अगर आदमी खड़ा है और थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो कई बारी अस्थमा के लक्षण कम होते हैं, सांस लेने में दिक्कत कम होती है। सुबह सुबह अगर एकदम बाहर निकलो, ठंड में जाओ, तब भी ट्रिगर फैक्टर होते, तब भी अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं।
0: तो ये थोड़ी सी एहतियात रखनी होती है कि जब आप सोकर उठें तो थोड़ा सा तापमान लेवल पे आ जाने दें, तब कहीं जाके हमें बाहर निकलना चाहिए।
3: एकदम से अपने पैरों को ठंडी फर्श पे नहीं टच करने दें, अचानक ठंडी हवा नहीं लगने दें।
0: जी, अस्थमा के रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे रेहान सर?
2: जी देखिए, धीरे धीरे जैसे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे

0: बढ़ रहा है और जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, धूल हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, तो जैसे जैसे इनसे एक्सपोजर बढ़ रहा है उसी हिसाब से इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं।
1: डॉक्टर अजीत सर, मौसम बदलाव की वजह से अस्थमा जो है गंभीर रूप ले सकता है क्या?
2: मौसम बदलाव के दो चीजें हैं, एक तो मार्च अप्रैल में है मौसम बदलता है, उसके साथ ही पोलन सीजन है, पेड़ का जो पोलन है जो कि सबसे बड़ा कारण है अस्थमा का, एक अभी होता है एक सितंबर अक्टूबर में होता है, दोनों ही टाइम मौसम बदलाव के साथ ही पोलन होते हैं। उसके बावजूद अचानक सर्द गर्म और जब मौसम बदलता है तब भी छाती के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, अस्थमा के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अस्थमा किस तरह से आपको अटैक करता है और किस मौसम में आपको सावधान रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं, ये आपको जरूर बताएंगे डॉक्टर रेहान सर। अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनको जानकारी है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी नहीं भी होती है तो अचानक से ऐसा अटैक आने पर लोग परेशान हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी सर को भी नमस्कार। मैं यामिन भाई, रेडियो वाला।
1: जी जी जी बताएं।
3: मैं सबसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिनके मम्मी पापा को अस्थमा या ये सांस की बीमारी होती है, क्या उनके बच्चों में ये बीमारी होने का संभावना रहती है, ये बताएं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं बच्चे?
0: देखिए, जो अस्थमा होता है उसके दो कारण होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहता है, जेनेटिकल भी रहता है। तो जेनेटिकल फैक्टर में अगर एक पेरेंट को अस्थमा है तो लगभग चांसेस 20-30% रहते हैं कि वो बच्चों में जाए। अगर दोनों पेरेंट्स को अस्थमा है तो उस केस में चांसेस 40-60% भी हो सकते हैं। तो आपको यही है जो ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसा कि हम बता रहे हैं, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, स्मोकिंग हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहें और प्रॉपर इनहेलर का जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का ध्यान रखें।
1: सर, ये भी अब सवाल उठता है कि अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए, जैसा कि मैं कॉल लेने से पहले आपसे पूछ रही थी।
0: देखिए, सबसे प्रथम तो जो पेशेंट रहता है अस्थमा का, उनके जो ट्रीटमेंट होता है तो सबसे पहले तो पेशेंट अस्थमा अटैक आते ही सीधे बैठ जाना है। उसके बाद में जो इनहेलर होता है, इनहेलर के 2-3 जो पंप होते हैं वो इनहेलर के वो लेने होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, और अगर हर 20 मिनट में ये रिपीट करना है, अगर सही नहीं होता है फिर जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचे।
1: तो ध्यान रखें कि बहुत नॉर्मल उसको ना लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अटैक है अस्थमा का तो तुरंत अवेयर हो जाएं और हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें और तमाम जानकारी जो लें और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हेलो।
1: जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। कहाँ से बोल रहे हैं सर?
4: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी, शुभ नाम बता दें अपना।
4: वीपी सिंह नाम है मेरा।
1: जी वीपी सिंह जी, बताएं क्या सवाल है आपका?
4: डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले मुझे मैंने अपने टेस्ट कराए थे, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे, और 2 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी। खांसी का तो ट्रीटमेंट हो गया, अब खांसी है नहीं, लेकिन जब कभी कभी धीरे धीरे जब हम खांसते हैं पेन होता है चेस्ट के।
1: अच्छा।
4: हल्का सा, खांसी जोर से नहीं आती है जैसे नॉर्मल तरीके से, कई बार खांसी आ जाती है
1: जी,
4: उस वजह से उस पेन होता है चेस्ट में, तो ये क्या कौन सा लक्षण हो सकता है ये मेरा जानना।
0: देखिए, आप जो बता रहे हैं आपको खांसी के साथ में चेस्ट में पेन है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये चेस्ट की बीमारी हो सकती है या फिर आपके जो कार्डियक इशू हो सकता है वो हो सकता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए बेसिक टेस्ट होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस जो होता है सांस की बीमारी और कार्डियक में, कि सांस की बीमारी में मेन सीटी जैसी आवाज आती है। अच्छा। जबकि जो कार्डियक बीमारी है उसके अंदर सीटी जैसी आवाज नहीं आती, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस जिसको बोला जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस चीज को।
4: मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है।
1: जी, आपकी उम्र क्या है सर? उम्र क्या है आपकी लगभग?
4: मेरी एज है 65+।
1: अच्छा, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है इस मौसम में, देखिए किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इनको जो सर?
0: जी, आपको मेन चेस्ट में पेन रहता है ये बता रहे हैं आप?
4: पेन नहीं रहता चेस्ट में।
0: जी,
4: जैसे हम खांसते हैं नॉर्मल।
0: जी जी,
4: उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2-3 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी, वो तेज खांसी थी।
0: जी जी,
4: उससे पहले ये दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी,
4: अब खांसी तो मेरी ठीक हो गई, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ठीक हो गई।
0: जी जी,
4: और ट्रीटमेंट भी चला मेरा।
0: तो अभी अभी क्या दिक्कत हो रहा है बताइए आप?
4: दिक्कत ये है, जैसे कभी कभी खांसी आ जाती है ना नॉर्मल, उसमें
0: जी जी

0: वो कष्ट होता है चेस्ट के अंदर?
1: देखिए वो तो नॉर्मल है, वो तो सब में ही, जैसे खांसी अगर होता है तो उस टाइम इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम वो टेम्पररी है वो चीज़, एक सेंडोक्साब ऐड करना चाहिए।
2: अभी डॉक्टर रेहान ने पहले भी बोला, अगर तेजी से खांसी करे, कुछ भी खांसी करे, तो जो चेस्ट के मसल वगैरह हैं उन पे स्ट्रेन पड़ता है, हल्का फुल्का दर्द किसी भी खांसी से हो सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
3: जी आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास मैसेज आ चुका है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, लिख रहे हैं कि नमस्कार, मेरी बहन को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और उसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ उसको छींक भी बहुत ज़्यादा आती है, उसके लिए उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसे कई बार घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है और नाक से सांस बिल्कुल नहीं आती है, किस तरह की सावधानी बरतें?
2: ये जो आप अपने सिम्टम बता रहे हैं ये ज़्यादातर एलर्जिक राइनाइटिस के हैं, जो एलर्जी प्रॉब्लम नाक की है कि छींकें आती है, नाक से पानी आता है, नाक से सांस बंद हो जाता है। एलर्जी, नाक की एलर्जी और अस्थमा में काफ़ी संबंध है। लगभग 60% मरीज जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, पॉलिप होते हैं, उनको अस्थमा भी होता है, और अस्थमा वालों को भी नाक के सिम्टम होते हैं, दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। तो जो नाक के सिम्टम हैं उनके लिए तो एंटी एलर्जिक गोलियां, एंटी एलर्जिक स्प्रेज आते हैं, वो लगातार लेने पड़ेंगे। साथ के साथ दमा अस्थमा का जो गोली और इन्हेलर डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं, वो साथ के साथ चलेंगे, दोनों ही इलाज इकट्ठे चलेंगे, और टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी के टेस्टिंग दो किस्म की होती है, या तो स्किन प्रिक के टेस्ट होते हैं, या आजकल ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं, थोड़े महंगे टेस्ट ज़रूर हैं, पर वो एक सिंगल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, और उसको

0: थोड़े महंगे टेस्ट जरूर हैं, पर वो एक सिंगल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, और उसको अवॉइड करने से आपकी चीज़ें कंट्रोल में रह सकती हैं
1: जी। और इससे डॉक्टर साहब ये भी क्लियर हो जाएगा कि अस्थमा है या नॉर्मल एलर्जी है, इनको ये भी जानकारी हो जाएगी।
0: कई बार दोनों इकट्ठे साथ के, दोनों ही साथ चलते हैं, पर अगर छाती की दिक्कत ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत ज्यादा है, तो वो अस्थमा की लक्षण ज्यादा है
1: जी। क्या फेफड़ों की स्थायी बीमारी होती है अस्थमा, या इसे ठीक किया जा सकता है?
2: देखिए, जो अस्थमा जो होता है वो स्थायी तो हम नहीं कह सकते
1: जी।
2: जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर बच्चों में हो रही है तो टाइम के साथ वो ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ों में हो रही है तो वो लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंट्रोलेबल डिजीज है, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं और सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग आराम से
1: मतलब जिनको अनुवांशिक है ये बीमारी, वो भी ठीक होने की गुंजाइश बनती है।
2: जी जी, ठीक तो नहीं कह सकते, बस हाँ। कंट्रोल रह सकती है बीमारी, आराम से अच्छा जीवन जी सकता है मरीज, जो अस्थमा का मरीज होता है वो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि बच्चे हैं, जैसे बड़े हैं वो अपनी केयर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, खेलने भी जा रहे हैं, तो क्या उनको हर वक्त इनहेलर साथ में रखना चाहिए?
2: देखिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तो पेरेंट्स एक हमेशा ध्यान रखें कि एक इनहेलर जो होता है वो उनके बैग में जरूर रखें, साथ में जो उनके टीचर्स हैं स्कूल में उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये बच्चा अस्थमेटिक है, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो इस हिसाब से इस इनहेलर का यूज़ करना है वो, ताकि उनको बता सकें, तो प्रिकॉशनरी इमरजेंसी केस में वो संभाल सकें उस चीज़ को
1: जी। तो बहुत सावधानी बरतिए, और किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
3: मैं रघुवीर सिंह उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी सर, बताएं क्या सवाल है आपका?
3: एक हमारे गांव का कोई आदमी था, तो वो शुरू में बहुत सिगरेट पीता था, तो अब सिगरेट पीने से उसको क्या हो गया, अस्थमा या एलर्जी कुछ बीमारी हो गया था, अब तो एक्सपायर भी हो गया। अब डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सिगरेट पीने से तो या तो माउथ ओरल कैंसर हो सकता है, तो इस हिसाब से हम सिगरेट पीने से अस्थमा का और ओरल कैंसर का क्या अंतर होगा, आप ये बताइए।
2: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिगरेट होता है वो हर बीमारी का एक जो इटियोलॉजी होती है, कोज होता है, वो सिगरेट होता ही है। तो सिगरेट माउथ कैंसर भी कॉज कर सकता है, सिगरेट लंग कैंसर भी कॉज सकता है, और सिगरेट जो है अस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, तो जितना हो सके सिगरेट स्मोकिंग जो होता है हमें अवॉइड करना चाहिए।
1: तो इनको आपने गाइड कर दिया है। आलोका जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रही है कि आई एम 54 ईयर ओल्ड फ्रॉम नोएडा, इन्होंने नोएडा से ये सवाल भेजा है। आई एम वेरी एलर्जेटिक और पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, कोल्ड वेदर एक्सेट्रा, कभी कभी विजिंग होती है सोते हुए, डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन फायदा नहीं हो रहा, क्या इनको करना चाहिए? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही हैं, लिखती हैं।
2: देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेन इन्होंने खुद ही बता दिया ट्रिगरिंग फैक्टर, जो डस्ट से एलर्जी होती है इनको, स्मोक से एलर्जी होती है
1: जी।
2: तो इन सब चीजों से, ट्रिगरिंग फैक्टर से आपको दूर रहना है, वही सबसे बड़ा इलाज होता है इस चीज में।
1: तो क्या ये साथ में जो मेडिसिन ले रही है होम्योपैथिक, अगर ये कुछ और भी ट्रीटमेंट लें तो क्या दोनों साथ साथ पॉसिबल है?
2: जी जी, मेनली अब इनको अगर कंटिन्यू रहता है तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस तो जब भी अटैक होता है उस टाइम साथ में लें, और स्टीरोइड्स का जो इनहेलर जो होता है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, वो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, इसके बारे में कैसे इस्तेमाल करें ये हम आपसे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
4: निर्भय सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: जी
4: डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना था कि मुझे कुछ दिन पहले खांसी हुई थी, और खांसी के बाद ना, खांसी तो ठीक हो गई है मगर बलगम बहुत आ रहा है, और ये 2-3 साल में लगभग रिपीट हो जाता है। मेरी उम्र लगभग 40 साल है।
0: आपको ये बताना पड़ेगा कि खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक से गले में बलगम गिर रहा है, किस किस्म का बलगम की बात कर रहे हैं?
4: गले गले में रहता है बलगम बस।
0: तो यानी छाती से खांसी करके अगर बलगम नहीं निकल रहा है तब ये दमा और अस्थमा नहीं लग रहा है, ये ज्यादातर साइनस की प्रॉब्लम लग रही है कि नाक से अगर पीछे बलगम गले में गिरे तो वो गले में इकट्ठा होता है और फिर आपको वो बार बार साफ करना पड़ता है।
4: अच्छा, इससे वैसे घबराने की तो कोई बात
0: नहीं? घबराने की कोई बात नहीं है, पर ये आपको चेकअप करा के इसका जो इलाज है वो करवाना पड़ेगा।
4: नहीं, वैसे वो तो डॉक्टर साहब से चल रहा है इलाज, वही कहते हैं 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, मगर फिर भी मेरे मन में थोड़ी शंका हुई, मैं डॉक्टर साहब से कुछ पता करता हूँ।
0: नहीं, ये साइनस के लक्षण लग रहे हैं, दमे अस्थमा के नहीं लग रहे हैं, जो इलाज है वो लेंगे तो ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए।
1: जी, और डॉक्टर साहब लगातार आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ लगातार बना हुआ है। तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मान सिंह जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर, सीजीएचएस, न्यू दिल्ली। आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन विषय पर। डॉक्टर रेहान सर, आपसे मेरा सवाल है कि इनहेलर लेने का सही ढंग क्या है और प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए इसके इस्तेमाल में?
2: देखिए, इनहेलर लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ
1: जी।
2: पहले अब स्ट्रेट मैन सीधा होके बैठना है, देन जो इनहेलर पंप होता है उसको हाथ में लेना है, देन माउथ स्पेसर जो होता है उसको यूज करिए, माउथ में रख के फिर 2 से 3 बार पहले धीरे धीरे गहरी सांस छोड़नी है, बाहर सांस छोड़नी है, उसके बाद में 2 से 3 पफ लेने हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, उसके बाद में थोड़ा होल्ड लेना है 4 से 5 सेकंड का, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सहेल करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो रेगुलर स्टीरॉयड यूज करते हैं उनके अंदर जो ओरल कैंडिडियासिस जो कि फंगल इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनहेलर यूज करने के बाद में माउथ वॉश करना या गार्गल करना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत छोटी सी बात डॉक्टर साहब ने बताई है लेकिन श्रोताओं इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी जो आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखिए। हमारे एक कॉलर फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी, मेरे को अस्थमा है काफी साल से, तो एक बार दमा की शिकायत हो गई थी
1: जी।
3: तो ये किस कारण होती है? और दूसरा सवाल है कि मैं पंप लेती दो दो, एक तो कैप्सूल डाल के लेती एक दवाई वाला लेती हूँ, तो ये कहते हैं कि पंप ज्यादा नहीं लिए ये गलत है, नहीं लेना चाहिए, सही है गलत है?
1: जी, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। आप अपना शुभ नाम बता दें मैम, कहाँ से बोल रही हैं?
3: हम कमलेश्वर में ब्लाइंड हूँ।
1: जी, कोई बात नहीं। हाँ, बताएं कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: ग्रेटर नोएडा से।
1: ग्रेटर नोएडा से। जी, डॉक्टर साहब हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं और आपका सवाल जो है उसका जवाब जरूर देंगे। बताएं और कुछ कहना चाह रही थी आप?
3: और मैम, मेरे सर में ना इतना दर्द होता है, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहती, सर में बहुत दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती, दिन में आती, इसका क्या कारण है? आंखों दिन नींद भरी रहती है और रात को आती नहीं है, धूप में खुल जाती
1: है। ये भी कोई अस्थमा का लक्षण है डॉक्टर साहब?
4: आपका जो सर दर्द है, नींद नहीं आती है, इसका अस्थमा से कोई जोड़ नहीं है, अस्थमा का कोई लक्षण नहीं है। अगर आपको जुकाम भी रहता है और आंख के आसपास भारीपन रहते हैं तो हाँ, ये साइनस का हो सकता है जो कि अस्थमा के साथ जुड़ा हो सकता है। जहाँ तक अस्थमा का आपका पंप सही तरीके से लेना है ज्यादा है या कम है, डॉक्टर रेहान जवाब दे देंगे।
3: पंप लेती हूँ सांस में, दो पंप लेती हूँ, एक तो कैप्सूल डाल के एक दवाई वाला, एक छोटी सी गोली खाती हूँ। तो मैंने टेस्ट भी कराया था तो बोलते हैं मेरे सीने में भी दर्द होता है तो नॉर्मल आता है, सीटी स्कैन कराती हूँ तो मैं सब नॉर्मल आता है मेरा, तो सीने में दर्द भी रहता है मेरे।
2: जी जी जी, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि जो पंप होता है वो बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से लेना है और रेगुलर लेना है।
3: अच्छा,
2: हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यही सबसे सबसे जो बेहतरीन इलाज है अस्थमा का वो पंप ही होता है, तो पंप आपको रेगुलर लेना है और इसको अवॉइड नहीं करना आपको बिल्कुल भी।
1: जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, इनको आपने बता दिया है। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, ये छवि जी का मैसेज है, लिख रही है, आई एम छवि चौधरी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। कैन वी डू हार्श स्पोर्ट्स इन अस्थमा, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्क्यू इनहेलर?
2: देखिए, जो इनका पहला सवाल है हार्श स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो बेसिकली अवॉइड ही करनी चाहिए क्योंकि ये अस्थमा को अस्थमा का अटैक हो सकता है। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है कंट्रोलर और रेस्क्यूअर, ये काफी बढ़िया सवाल है। जो कंट्रोल, एक तो होता है रिलीवर मेडिसिन, रिलीवर मेडिसिन वो होती है जो कि जब अस्थमा का अटैक होता है उस टाइम हम यूज करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल हो गया, वो रिलीवर मेडिसिन होता है। एक होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर वो होता है कि अगले अटैक को होने से रोकता है या

0: टाइम तक डिजीज को प्रिवेंट करता है। तो उसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी स्टीरोइड्स जो कि इन्फ्लामेटरी जो इनहेलर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं।
1: तो बहुत सारी बातें श्रोताओं आपको जानने को मिल रही है, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी सर बताएं क्या सवाल है आपका।
2: ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिसिस में क्या अंतर है और ब्रोंकल अस्थमा का कोई वैक्सीन भी बनाया कि नहीं?
0: देखिए जैसा कि आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक तो कोई
3: तक नहीं है,
0: अभी तो कुछ है नहीं, हो सकता है आगे इस पे अभी रिसर्च चल रही हो, आगे आ जाए।
1: तो जागरूक लगातार हम आपको कर रहे हैं कि किस तरह से आप अस्थमा से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशन आपको बरतने हैं और किस तरह से आपकी जीवनचर्या हो और क्या क्या आपको खुद सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन अपने विशेषज्ञों के माध्यम से करवा सकते हैं लेकिन आगे जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मौसम बदलता है और खान पान, खास करके मुझे लगता है कि जिनको अस्थमा की शिकायत है खान पान पर भी कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है क्या, कि ठंडी चीजों से बचना है? गर्मी का समय है तो लोग फ्रिज का पानी नॉर्मली घर में घुसते ही पी लेते हैं, क्या इन सब चीजों से बचना है?
0: जी जी बिल्कुल, इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं बहुत प्रोन होते हैं इन चीजों से। अगर थोड़ी भी ठंडी हवा लग गई या फिर सुबह मॉर्निंग में जैसे ठंडी हवा होती है वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठंडा पानी हो गया वो एक तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। तो रेगुलर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियां खाइए, रेगुलर हल्का फुल्का वॉक कीजिए तो डिजीज कंट्रोल में रहती है और प्रॉपर इस्तेमाल करिए इनहेलर का जो रहता है।
1: लेकिन अब एक समस्या आती है कि क्या अगर मेडिसिन शुरू हो गई है तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी या क्या कितने समय तक ट्रीटमेंट होता है, कुछ ऐसा भी नियत होती है चीजें?
0: देखिए अगर लंबे टाइम तक जैसे जो गाइडलाइन जो कुछ कहती है कि अगर 5 दिन से ज्यादा हफ्ते में अगर उसको सिम्टम्स रहते हैं तो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेडिसिन छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो अगर एक्यूट अटैक आता है जब भी तो उस टाइम इनहेलर का प्रॉपर इस्तेमाल करें।
1: तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और हमारे पास आया हुआ है मैसेज, ये है, लिख रहे हैं, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम वीरू बख्शी है और अपनी उम्र ये 62 साल लिख रहे हैं कि मेरे साथ एक माइनर कुछ इन्होंने दिक्कत बताई है कि इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा क्यों है जानना चाहते हैं, क्या ये सिर्फ मौसम का असर है या ऐसा कुछ इन्होंने बाकी दिक्कतें नहीं लिखी हुई हैं।
1: देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि सांस लेने में दिक्कत है
0: जी,
1: तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक बार आप जल्दी से जल्दी फिजिशियन से मिलिए, वो एक बेसिक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उससे वो पता चल जाएगा कि बेसिकली ये सांस की बीमारी है या कुछ और कारण है।
0: जी, घबराहट भी इन्होंने लिखी हुई है कि इनको घबराहट होती है, ऐसा किस वजह से होता है, मतलब अस्थमा जैसी कोई समस्या तो नहीं है, इनको ये जानना चाहते हैं।
1: उसी को रूल आउट करने के लिए बेसिकली आपको वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी।
0: जी, तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चर्चा आप लोगों से जारी है, क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो गर्मी का मौसम है और कैसी सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि खान पान आपने बता दिया है, और कैसी दिनचर्या हो, क्या व्यायाम भी होना चाहिए, किस तरह का व्यायाम होना चाहिए?
2: जैसे अभी पिछला सवाल का जवाब दिया था, हार्श स्पॉट्स, तेज एक्सरसाइज से जब अक्यूट अस्थमा हो रहा हो वो अवॉइड करना चाहिए। जेंटल व्यायाम जरूरी है क्योंकि उससे वो फेफड़ों की पावर बढ़ेगी। कहते हैं आधा घंटा चलना या जो एरोबिक है, बहुत हार्श नहीं करें, पर रेगुलर एक्सरसाइज से अस्थमा के कंट्रोल में काफी फायदा आएगा।
0: हमारे एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: ओम शांति।
0: ओम शांति।
3: हाँ, मेरा, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरा इस सवाल का उत्तर छूट गया था।
0: जी, अभी बात हुई थी आपसे, बताएं क्या सवाल छूट गया था आपका।
3: जी, मैंने कहा था कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है?
1: देखिए, जो ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बेसिकली टेम्पररी होती है, और उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो सूजन होती है, वो रिवर्सिबल।

0: कहते हैं, उनका क्या सवाल है? जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: हाँ, मेरा, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरा जी, जी, सवाल का उत्तर छूट गया था
0: जी, अभी बात हुई थी आपसे, बताएं क्या सवाल छूट गया था
1: जी। मैंने कहा था कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है?
2: देखिए, जो ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बेसिकली टेम्पररी होती है, और उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है, जो सूजन होती है, वो रिवर्सिबल होती है। जबकि जो ब्रोंकाइटिस है वो एक क्रोनिक बीमारी है, और उसमें जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। तो मेजर डिफरेंस ये है दोनों में, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है।
0: तो चलिए, आपका जो सवाल था उसका जवाब भी आपको मिल गया है, और संयोग है कि आपका फोन मिल गया दोबारा से। अक्सर ऐसा होता है कि फोन लाइन मौजूद नहीं रहती है, और मतलब मौजूद तो है लेकिन मिलता नहीं है फोन जल्दी से, तो ये समस्या आपकी दूर हो गई है। और अगला जो हमारे पास मैसेज है, लिख रहे हैं दोनों डॉक्टर साहब और एंकर मैम को, गुड आफ्टरनून मैम। अस्थमा में पॉल्यूशन का क्या रोल है? अपने क्षेत्र में स्वच्छता रखने से क्या कोई फर्क पड़ता है, कृपा करके बताएं। नरदेव सिंह चौहान जी कोटद्वार उत्तराखंड से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कर रहे हैं।
2: देखिए, जो साफ सफाई अगर रखेंगे हम तो डस्ट होगा, जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा। तो बेसिकली जो ट्रिगरिंग फैक्टर होंगे वो हम कम कर रहे हैं, तो उससे अस्थमा बेहतर रहेगा, जिससे कि अस्थमा कंट्रोलेबल रहेगा
0: जी।
2: तो साफ सफाई का तो हमें हमेशा ही विशेष ध्यान रखना चाहिए,
0: ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है, मैसेज है हमारे पास। गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि टीबी और अस्थमा में क्या अंतर है? और मेरा लड़का 11 साल का है, 3 साल से नाक से ब्लड आता है, ESI में उसका सारा इलाज हुआ है, मगर नाक जब बंद होने लगती है तो कोड की वजह से ब्लड आने लगता है, किस तरह से उसका क्या इलाज किया जाए?
3: आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो कि टीबी और अस्थमे में क्या फर्क है। टीबी एक छाती की इन्फेक्शन है, अस्थमा से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अस्थमा फेफड़ों की हाइपर रिएक्टिव प्रदूषण वगैरह की वजह से होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों का अलग अलग, सिवाय के दोनों में खांसी होती है और कोई सिमिलरिटी नहीं है।
2: देखिए, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो अस्थमा होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, जबकि टीबी जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है ये चीज।
3: और जहाँ तक नक्सीर का सवाल है, वो अस्थमा से कोई ताल्लुक है नहीं, पर उसका अगर कहीं भी खांसी जुकाम हो, नज़ला हो, तो नाक के अंदर थोड़ा ये ब्लड बढ़ जाता है, और छोटे बच्चों में छोटी नक्सीर अक्सर होती है। तो यही है कि खासकर गर्मियों में उसका थोड़ा लुब्रिकेशन रखना चाहिए, तो क्रीम या कुछ लगाएं कि आगे सूखापन नहीं रहे और नाक में उंगली वगैरह नहीं डालें।
0: अगला हमारे पास मैसेज आया हुआ है, मनीषा जी रांची से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 75 वर्ष की है, और लिख रही हैं कि मैं हृदय रोग की मरीज हूं, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मुझे नेबुलाइजेशन और इनहेलर दोनों दिया गया है, क्या ये एक है या अलग अलग है?
2: देखिए, मेजर डिफरेंस जो नेबुलाइजर और इनहेलर में जो होता है, इनहेलर जो होता है बेसिकली पंप होता है, जिसको पंप की मदद से हम लेते हैं। जो नेबुलाइजर होता है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको एक मशीन में डाला जाता है और उसके बाद में उसको भाप दी जाती है।
0: तो इसका अलग अलग प्रयोग है, और दोनों ही जरूरी होता है।
2: दोनों ही जरूरी
0: होता है। स्थिति है, उम्र भी ज्यादा है, 75 वर्ष की उम्र है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं
2: जी
0: है
2: जी।
0: तो आप निश्चिंत रहें, डॉक्टर साहब ने आपका मार्गदर्शन कर दिया है।
3: जो आप कह रहे हैं कि हृदय के मरीज हैं, डॉक्टर साहब ने बोला था दो किस्म की दवाइयां, एक जो कंट्रोल करती हैं, प्रिवेंट, जो दवाई कंट्रोल करती है, जिसे ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लेने से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उससे हृदय में असर पड़ सकता है। वही एक चीज के लिए आपको संपर्क रहना चाहिए।
0: बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई। उम्मीद है कि आप सभी इसको नोट डाउन करिए, ताकि आप भूल ना जाएं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, अस्थमा विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार आप सभी का जो सवाल है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारे पास अगला मैसेज आ चुका है रमेश कुमार जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। नमस्कार एवरीवन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबको बहुत धन्यवाद। कैन अस्थमा पेशेंट कैन लीड नॉर्मल लाइफ?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका। अस्थमा पेशेंट होते हैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस लें, सही तरीके से लें, सही टाइम पे लें। जैसा कि हम देखते हैं ओपीडी में, मैंने देखे हैं 85 इयर्स 90 इयर्स के पेशेंट भी आते हैं अस्थमेटिक हैं, वो पूरी लाइफ लॉन्ग अच्छे से दवाई लेते हैं और अच्छा जीवन जी लेते हैं वो लोग।
0: जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहेंगे?
2: मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सीजनल अस्थमा होता है जो ज्यादातर पोलन से रिलेटेड होता है, जैसे दिल्ली में मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, और दिल्ली में उसके बाद अब प्रदूषण से दशहरा के बाद जनवरी तक चला है पिछले साल, वो उस किस्म के अस्थमा में जब नॉर्मल हालात हो जाते हैं, जैसे अब मई में एक दो

0: हफ्ते में बिल्कुल पोलन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आदमी लीड कर सकते हैं दवाइयों के बगैर भी. सिर्फ जब ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं तब दवाई लेनी पड़ती है, बाकी टाइम वो जैसे बोला था हार्ट स्पॉट्स भी कर सकता है.
1: हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब. नेजल पॉलिप, साइनसाइटिस और एलर्जी का अस्थमा से क्या रिलेशन है?
0: नेजल एलर्जिक राइनाइटिस जो कि नाक की एलर्जी होती है उसकी वजह से नेजल पॉलिप्स होते हैं ज़्यादातर, आसपास जो फंगस होते हैं उसके अगेंस्ट जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उससे नाक में पॉलिप होते हैं. नाक के पॉलिप मतलब नाक के अंदर अंगूर जैसे छल्ले बन जाते हैं, नाक बिल्कुल बंद रहती है, स्नीजिंग होती है, साइनसाइटिस जहाँ नाक के आसपास साइनसेस में बलगम इकट्ठी हो जाती है. इनके दमा अस्थमा से दो ताल्लुक है, एक तो पॉलिप्स और अस्थमा, ये दोनों ही चीजें बाहर के ट्रिगर फैक्टर से प्रवोक होती हैं. लगभग 60% चांस है कि मरीज अगर जिसको पॉलिप है उसको अस्थमा भी होगा, प्लस अस्थमा वाले मरीज को पॉलिप्स भी हो सकते हैं. दूसरा, साइनस से अगर रेशा गले में गिर के छाती में गिर रहा है तो वो भी फेफड़ों को इरिटेट करके दमे को प्रवोक कर सकता है
1: जी.
0: एलर्जी दोनों में ही रहती है, ट्रिगर फैक्टर एलर्जी दोनों में ही कॉमन रहता है
1: जी. डॉक्टर साहब, लंबी खांसी चल रही है और सूखी खांसी है तो अक्सर लोग फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहीं ये अस्थमा का लक्षण तो नहीं है?
0: ये पेशेंट मरीज से पूछना पड़ेगा, लंबी खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, खांसी के साथ सीटी बजती है नहीं बजती है, खासकर बलगम है या सूखी है, लेटते हुए, सारी खांसी ज्यादातर लेटने से खराब होती है, चाहे साइनस का रेशे बलगम से हो, अस्थमा से हो. तीसरा फैक्टर खांसी का है पेट का तेजाब ऊपर आके जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है. इन सबको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लक्षण है सांस में दिक्कत और सीटी. क्यों
2: जी? जी, ये एपिसोडिक रहता है. हाँ, ये तीनों सिम्टम जो रहते हैं एपिसोडिक.
0: अगर अकेले लंबी चल रही बिना इन तीनों के सिम्टम के तब ये अस्थमा नहीं
1: हो सकता जी. अब डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि हृदय रोग में और अस्थमा में दोनों में ही दिक्कत होती है सांस लेने में और हार्ट में, तो कैसे इसका डिफरेंस कैसे किया जाए?
2: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका. मेनली जो कार्डियक की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वो होता है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है. जबकि जो अस्थमा होता है उसमें फेफड़ों में इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत रहती है. तो बेसिकली अस्थमा के केस में ये सीटी की आवाज रहता है, जबकि कार्डियक केस में सीटी की आवाज नहीं बल्कि शरीर में सूजन रहती है, पांव में सूजन रहती है. वो अलग फैक्टर्स होता है, इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं उस चीजों से.
0: और उसमें खड़खड़ की इसी भी आवाज रहती है छाती में.
2: जी जी जी,
0: सीटी की जगह.
2: जी जी, ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए और बाकी जो स्पेशलिस्ट के पास जाके जो टेस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो डिफरेंस कर देगा उस चीज को.
1: जी, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे अस्थमा के पेशेंट है उनको किस तरह की और सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने मौसम का भी आपसे जिक्र किया कि मौसम बदल रहा है और हमारे जो श्रोता थोड़ी देर में हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक बार शॉर्ट में उनको बता दीजिए कि किस तरीके से इस मौसम में उनको सावधानी रखने की जरूरत है.
2: देखिए, अभी जो मौसम है, मौसम थोड़ा बदल रहा है, थोड़ी गर्मी हो रही है, काफी सीजनल है
1: जी.
2: तो इस सीजन में पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, उसके साथ साथ जो एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनका भी अभी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो रहा है. तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि बाहर जब भी निकले थोड़ा मास्क लगाकर थोड़ा परहेज रखें इन चीजों से. बाकी जो इनहेलर होता है वो हमेशा अपने साथ रखें, जब भी उनको अटैक आए उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें. और अस्थमा जो है एक कंट्रोलेबल डिजीज है, इससे बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है
1: जी. डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: सबसे बड़ी चीज है जो एलर्जन है, अगर पता लग जाता है एलर्जी टेस्ट से कि क्या आप कुत्ते से एलर्जी है, बिल्ली से एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है,
2: या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम,
0: कई किस्म की बर्मुडा ग्रास और आसपास घास होती है, उनसे अवॉइड करना सबसे जरूरी है. आपने मास्क के बारे बोला था, यही है कि थोड़ा सबको मास्क पहनने की आदत तो हो ही गई है, पर अगर प्रदूषण में जाए तो वो N95 अगर मास्क पहने तो बचाव हो सकता है. पर फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वैसे ही उनको सफोकेशन है तो मास्क पहना नहीं जाता.
2: मास्क तभी पहने जब वो एक्सपोजर एनवायरनमेंट में जा रहे हों.
1: जी, तो बहुत ही यहाँ पे उम्दा चर्चा रही है कि उम्मीद है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे लाभ जानने को मिले हैं और जो भी पेशेंट है उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत गौर से कार्यक्रम सुना होगा. अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो भी जानकारी आप तक पहुंची है तो उसका लाभ आपने जरूर लिया होगा. चलते चलते बस यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, क्योंकि आरोग्यम परम धनम. बाकी धन के प्रति हम सजग रहते हैं लेकिन इस धन के प्रति हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए. आपका साथ देने के लिए लगातार रेडियो डॉक्टर आपके साथ है, इसका लाभ लीजिए और कार्यक्रम

0: सुनते रहिए। आपको बता दें कि आज हमने जिस विषय पर चर्चा की वो था अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद थे। आप थे डॉक्टर अजीत मानसिंह जी, ENT स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी जी, मेडिकल ऑफिसर CGHS न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई।
1: आपका धन्यवाद कि हमें बुलाया
2: जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का और हमारे श्रोताओं का भी जो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।

0: की हवा में चीर दे होया पलंग से तेरे वीरा तो कोई हम दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन रहे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।

0: हैलो जलंधर प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो जी। टाइम हो चुका है 4:22 ते 29 सेकंड ते अगले कॉलर दोस्त आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां। हैलो
1: हैलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: परवीन बोल रहा है, गोपाल नगर जलंधर से।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे जी?
0: हाँ जी नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार बोल रही मलेरकोटले तो।
1: जी राकेश जी, बहुत स्वागत है तोड़ा। इन्ने
0: धन्यवाद
1: सोहने शहर
0: जी।
1: तो बोल रहे हो तुसी? मैं
0: हाँ जी
1: कह इन्ने सोहने शहर तो बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, मलेरकोटले तो जी 5-6 महीने बाद कॉल लगी है जी अज।
1: ओ अच्छा जी, की ते
0: हाँ
1: इन्नी
0: जी,
1: देर
0: पहले
1: क्यों
0: मैं
1: लगा
0: जब
1: दिती?
0: जमाना मैं चलिया सी ओ तो हफ्ते बाद लग जाती सी,
1: अच्छा
0: हूं
1: जी,
0: तो 5-6 महीने हो गए रोज डायल करते हैं, लगते ही नहीं।
1: चलो मेहनत होगी फिर था ना।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: किन्ना टाइम
0: मेरे
1: लगा
0: एक
1: फोन
0: मिनट
1: डायल
0: घटा
1: करन
0: रहे
1: नू?
0: होंगे एवरेज।
1: किन्ना टाइम, कितने टाइम तो डायल कर रहे सी?
0: मैं बस हूं दूजी तीजी बारी दबिया का
1: ओके
0: लग गया।
1: देखो, हर काम नू करन लई मेहनत चाहिदी है,
0: हाँ जी
1: टाइम चाहिदा ना। वे असी टाइम कढ के फोन करिए,
0: हाँ जी हाँ
1: ते अज
0: जी
1: असी उसे टाइम ते ही गल कर रहे सीगे। भी लोग कह दिंदे ने वी साडे कोल तां टाइम नहीं हैगा, पर थोड़ा ज्यादा टाइम
0: हाँ जी
1: फोन ते जांदा है, रील्स देखन ते जांदा है, पर ओदां तुसी कह दिंदे आ वी साडे कोल टाइम है नहीं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: है ना? ओदे ते की कहना चाहोगे?
0: बस काम कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ,
1: ਜੀ।
0: ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟ ਪਵਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ।
1: ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨੈੱਟ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਚਲਾ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਗਿਆ।
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਓਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
0: ਹਾਂਜੀ ਘਾਟਾ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇਖ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਘਰ ਘਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ?
0: ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਜੀ।
1: ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਚ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ।
1: ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਏਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ?
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਔਨ ਏਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
0: ਨਾ
1: ਹੋ।
0: ਜੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ
0: ਵਧੀਆ।
1: ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ?
0: ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ 57-58 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ।

0: आखिरी कॉलर दोस्त कौन जुड़े नहीं आओ देखते हैं। हेलो नमस्कार
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: जी
1: मैडम जी, न्यू संत नगर जलंधर तो मोंटी बोल रहे हैं जी।
0: जी मोंटी जी, की हाल ने जी?
1: हाँ जी मैडम जी, बहुत वधिया जी।
0: की कर रहे सी इस टाइम?
1: मैडम जी इस टाइम असि ना काम ही कर रहे सी ते नाल ताडी कॉल लगा रहे सी।
0: दोवें काम इकट्ठे कर ले।
1: हाँ जी ऐदा ना, हुण फिर मैं आपा उठ के ताडी फिर हुण पहला कॉल ही लगाई। मैं क्या टाइम हो रहा ते पहला मैं उठ ही।
0: तुहाडा वधिया, दिन च दो ब्रेकां हो जांदियां ना, एक लंच ब्रेक एक फोन ब्रेक।
1: मंदिर जाके मैडम जी असीं शाम नूं जोत जगाई दी है।
0: अच्छा जी।
1: घंटा बैठ के उहनां दे पाठ याद करी दे।
0: क्या बात है, मतलब ए गल वधिया वी, पाठ दे नाल नाल मेडिटेशन भी हो जांदी है ना।
1: हां जी हां जी मैडम जी, एक ना माइंड भी फ्रेश हो जांदा ना।
0: हां ए बहुत सोहनी गल कीती तुसीं।
1: हां ओथों आ के मैडम जी बच्चियां नाल थोड़ा जिहा टाइम रात नूं गुजार लईदा अपने।
0: जी तो सारीयां चीजां मैनेज हो जांदियां।
1: हां जी हां जी,
0: बहुत सोहनी गल है।
1: मैडम देखो जी, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर।
0: जी जी
1: मैडम जी, सानू समय दा सदुपयोग करने चाहिए। जे सानू फ्री समय मिलदा ना ते ओंदे च कुछ अच्छा सिखो, अच्छे कर्म करो,
0: बिल्कुल
1: ओनू व्यर्थ ना गवाओ जी।
0: बिल्कुल
1: जी, समय बहुत कीमती है, जेरी एदी कदर जानदा ना ओनू ही पता हुंदा जी।
0: बिल्कुल जी, ते जदों टाइम बीत जांदा उदों पछताउण नालों चंगा वी जदों हाथ च है ओह सांभ लईए।
1: हां जी देखो जी, असीं वेले ओह हाथ सांभिया ते हुण सानूं पछतावा नहीं हैगा। अच्छा लग रिहा कि असीं ओह वेला सांभिया होया ते साडे ओही अग्गे आ रिहा, अच्छा वेला अग्गे आ रिहा।
0: ठीक है जी, बहुत सोहणी गल कीती तुसीं। ते अज गीत किहड़ा सुणना?
1: गीत मैडम जी सुणा दो तुसीं, गिप्पी गरेवाल जी दा 28 किले जिट्टी रोड।
0: ठीक है जी, फोन करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो इस दे नाल हुण हैलो जलंधर प्रोग्राम भी इत्थे ही खत्म करदे हां। अगला प्रोग्राम तुसीं सुणोगे साडे नौजवान दोस्तां कोलों, प्रोग्राम युववाणी, ते असीं मिलांगे 6 बजे प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे नाल।

0: जी हाँ दोस्तों, असी अज मना रहे हाँ सीताराम राजू जी का जन्मदिन। ते दिन जिहड़ा है वो बहुत ही ज्यादा वधिया चढ़िया है। अज बारिश वाला दिन है ते मैंने लगता
1: बिल्कुल
0: है चाह पकौड़े जिहड़े है वो तो सारे ही खा रहे हैं। इस दे
1: बिल्कुल
0: नाल ही एक होर खास जानकारी तुहाडे लई, क्योंकि अज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे भी है, यानी जुलाई का जिहड़ा पहला शनिवार है वो अज चढ़ गया है ते हुण तां लथण ही वाला है।
1: बिल्कुल
0: ते हर साल जुलाई दे जिहड़े पहले शनिवार हुंदा है ना, उस दिन मनाया जांदा है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इस दिन दा उद्देश दुनिया भर विच सहकारिता, यानी किद्दां तुसीं एक दूसरे नाल कोऑपरेट करके काम करते हो, तुहाडा टीम वर्क, तुहाडी इक्वालिटी, ते एक दूजे उत्ते कीता होया भरोसा, ते तुहाडा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ते तुहाडी सांझी तरक्की नूं मनाउंदा है। ते इह दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ग्लोबली। जे तुसीं तरक्की करना चाहते हो तो सारिआं नूं नाल लै के ही तुसीं इह तरक्की कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नूं इनकरेज करता है इह दिन।
1: बिल्कुल जे इस दिन दी गल करिए, इस दिन दा बेसिकली ये चीज़ है कि कोऑपरेटिव्स हुंदे की है। कोऑपरेटिव्स हुंदे जेहड़े ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे आंदे है ते इकट्ठे काम करदे, इकट्ठे बिजनेस रन करदे है, ते कोई इहदे विच बॉस नहीं हुंदा, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुंदी। हर किसी की आवाज़ दे विच जिहड़ी क्या कहिंदे है ओपीनियन जो भी हुंदा उहनां दी एडवाइस हुंदी है, हर किसी की सुनी जाती है। चाहे तुसीं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपये नाल करो, चाहे उस तो ज़्यादा दे नाल करो, ताड़ी जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उस बिजनेस दे विच ओनी ही रहिंदी है जिन्नी नीडेड है।
0: बिल्कुल
1: ते उस दे नाल ही असीं जे गल करिए कि ये क्यों इन्ना मैटर करता है, फार्मर्स लई बहुत मैटर करता है, क्योंकि अमूल गुजरात दे विच बहुत सारे फर्टिलाइजर्स दे विच काम करते हैं, तो फार्मर्स नू बहुत हेल्प करते हैं कोऑपरेटिव्स। उस दे नाल वर्कर्स जिहड़े वीवर्स, ड्राइवर्स या विमेन्स हुंदे हैं, या जिहड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हुंदे हैं हैंडलूम्स दे, ओहदे नाल भी कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। तो उस दे नाल ही सोसाइटी वास्ते भी बहुत सही रहिंदे ने कोऑपरेटिव्स, प्रॉफिट्स वधांदे ने, पीपल दे उत्ते, लोकां दे उत्ते फोकस करते हैं, इन्ने प्रॉफिट या इन्ने पैसों ते फोकस नहीं करते।
0: बिल्कुल, पर मैनू लगता है कोऑपरेटिव्स नाल काम करन ते नाल ही नहीं सिर्फ चल रहे। तुसीं जदों रिस्पोंसिबिलिटीज़ नू शेयर करते हो, तुसीं एक दूजे उत्ते ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, ते तुसीं सोचते हो कि असीं जो भी कीता असीं नाल मिल के कीता है, हर एक दा इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है। तुसीं इक्वालिटी विच बिलीव करते हो, एक दूजे दी रिस्पैक्ट करते हो, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ
1: ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ।

जैसे पगडंडियां सड़कें नहीं होती लेकिन रास्ते होती हैं, जैसे घड़ियां समय नहीं होती लेकिन समय का हिसाब होती हैं, जैसे कागज पर बने पेड़ जिंदा नहीं होते लेकिन पेड़ों के होने का भरोसा होते हैं, वैसे ही कुछ चीजें अपने रूप में नहीं अपने अर्थ में जीवित रहती हैं, जैसे हम और आप। शाम के 6:26 हो रहे ने, लव यू जिंदगी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैं हाँ कुसुम थोड़े नाल। सो इस प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां एक सोहने जे गीत दे नाल, ते उस तो बाद जिंदगी नूं लैके बहुत सारियां गल्लां बातां थोड़े नाल होणगियां। तुसीं जुड़े रहना है 102.7 FM रेनबो दे नाल।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सनती माहरा दा कहना है कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम विज्ञानक पड़ाव पर पहुंच राही लागू किया गया है। सरकार ने कीमत स्थिरता लिए प्याज की खरीद कीमत 13% वधा के 2,125 रुपए फी क्विंटल की थी। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मोहाली दे पिंड सनेटा विखे कायम देहाती सेहत सिखलाई केंद्र का उद्घाटन किया। पंजाब पुलिस ने साइबर अपराध खिलाफ मुहिम की होर तेज, एक साल में 729 गिरफ्तारियां। भारत ने इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर विखे खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्तार नाल। सनती माहरा ने किया है कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम रातों रात लागू नहीं किया गया, सगों एक चंगी तरह योजनाबद्ध पड़ावार अते विज्ञानक तौर ते संचालित प्रक्रिया राही लागू किया गया है। नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दे साबका चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने किया कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम नूं 2018 विच ढांचागत चर्चा अते हिस्सेदारां दे सलाह मशवरे लई जनतक खेतर विच रख्या गया सी। उन्होंने भी कहा कि इस पहलकदमी नूं विज्ञानक सबूतां ऑटोमोबाइल निर्माताओं एसोसीएशन ऑफ ऑटोमोटिव रिसर्च ऑफ इंडिया और सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स वालों कीतियां व्यापक परखां की हमायत प्राप्त है। इस मौके बोलदा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के चेयरमैन और कार्यकारी उपमुखी विक्रम गुलाटी ने कहा कि इथेनॉल एक साफ सुथरा इंधन है जो चंगी संचालन कुशलता और उच्च गति की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि एक अजिहे युग में जदों लोग जलवायु तब्दीली दियां चुनौतियां का सामना कर रहे हैं, यह बूटियां तो प्राप्त एक जीरो कार्बन ईंधन है। सरकार ने कीमत स्थिरता लई प्याज की खरीद कीमत विच 13% का वाधा किया है। खपतकार मामले खुराक अते जनतक वंड मंत्रालय मुताबिक खरीद कीमत हुण 1,875 रुपए फी क्विंटल तो वध के 2,125 रुपए फी क्विंटल हो गई है। सोधी हुई खरीद प्रति कीमत आज तो लागू है। मंत्रालय मुताबिक इस नाल प्याज किसानों नूं बेहतर लाभ मिलेगा अते खरीद यत्ना च भी मदद मिलेगी। सरकार दे कीमत स्थिरता बफर लई प्याज की खरीद भारतीय राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सहकारी मार्केटिंग संघ लिमिटेड नाफेड अते भारतीय राष्ट्रीय सहकारी खपतकार संघ लिमिटेड NCCF राही जारी है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग दे साल 2025-26 लई दूजे अगाऊ अनुमान मुताबिक प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन तो वध होण दा अनुमान है। मंत्रालय ने भी कहा है कि मौजूदा भंडार काफी है अते इस समय प्याज की कोई थोड़ नहीं है। प्याज दा भारत भर विच औसतन परचून मुल 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज की बरामद आम वांग है ते इस साल जून दे महीने दौरान करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन प्याज की बरामद हुई है। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज डॉक्टर भीम राव अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली दे

नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल ते गुड इवनिंग ते आज वाली खास खास खास गुड इवनिंग क्योंकि आज है जी शनिवार दी शाम सैटरडे नाइट वीकेंड ते इस वीकेंड दे उते मैं आई हां तुहाडे नाल गल्लां बातां करन ते तुहाडी शाम नू होर खूबसूरत करन। जी हां तुहाडी दोस्त वंदना आज हाजिर है इस खास वीकेंड दी शाम दे उते खास गल्लां बातां लै के कुछ खास सोहणे सोहणे नगमे लै के ते प्रोग्राम दी असीं शुरुआत करनी है जी फिल्मी दुनिया दे नाल जिहदे विच असीं गल्लबात करांगे जी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ दे बारे विच ते नाल नाल गल्लबात होएगी जी कुछ बॉलीवुड दे बारे विच बॉलीवुड दे बारे

हां जी, एक बारी फिर तो तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम नेट वाणी दे विच। अच्छा, असी अज गल कर रहे हैं नेट वाणी दी, ते मैं तुहानू ए दसना चाहवांगी कि तुसी गूगल ते आखरी वार सर्च कदों कीता सी। शायद तुसी सर्च कीता होएगा कि सब तो बेस्ट पिज़्ज़ा मेरे नेड़े कित्थों मिलता है, या ट्रेन दी टाइमिंग की है, पासपोर्ट अप्लाई किद्दां करिए, शुगर फ्री रेसिपी की है, है ना। पर सोचो जे गूगल तुहानू सिर्फ 10 ब्लू लिंक्स दिखाउण दी जगह दे उत्ते तुहाडे नाल बैठ के गल करे, फॉलोअप सवाल पूछे कि भाई किद्दां करना है, की करना है, फिर कंपैरिजन करके तुहानू देवे, ट्रैवल प्लान बना के देवे, शॉपिंग कंपेयर करके देवे, ते रिसर्च जिहड़ी है तुहाडी समराइज करके देवे, तां फिर तुसी की करोगे भाई। तुहाडी तां बल्ले बल्ले हो जाणी, क्योंकि काम सौखा हो जाणा सारा। जी हाँ, ते कईयां ने शायद इस चीज़ का ध्यान नहीं दिता होएगा, जदों असी गूगल दे उत्ते लिखदे आ ना सारी इनफॉर्मेशन, उहदे नीचे ही आंदा AI मोड, ते तुसी जदों AI मोड दे उत्ते अपनी इनफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू करदे हो, तां जी गूगल तुहाडे नाल गल्लां बातां भी करन लग जांदा है, ते फिर तुसी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है उत्थे भी तां सर्च कर सकदे हो। और एक सब तो वधिया चीज़ जिहड़ी है उस AI मोड दे उत्ते भी, कि तुसी बोल के भी अपना क्वेश्चन जड़ा है वो पूछ सकते हो, फिर वो तुहाडे नाल गलबात करेगा, अगों दे तुहानू काउंटर क्वेश्चन भी होणगे, फॉलोअप्स भी होणगे बहुत सारे। तो कहिंदे पए ने जी आने वाले टाइम दे विच दा इमोशंस भी होर ऐड हो जाने ने उहदे विच। वैसे तो फिलहाल हजे भी इमोशंस ने, जे तुसी थोड़े जे गुस्से नाल गल करदे हो या फिर किसी भी तरीके नाल, तो इमोशंस जड़ा ना AI समझण लग गया है। इस करके सिर्फ गूगल नू कमांड ना दिओ हुण समझण वास्ते, तुसी गूगल दे नाल गलबात करो, डिस्कशंस करो, ताकि तुहानू होर बैटर होर नॉलेज वालियां गल्लां मिल सकन। पर इहदे वास्ते ना एक बड़ी वड्डी समस्या है। जे तुसी नोट कीता होए, अज कल AI दे बारे च सारे जणे बहुत ही गल्लां करदे ने जी, AI आ गया है हुण तां जी, नौकरियां बहुत चलियां जाणियां, इदां हो जाणा उदां हो जाणा, क्योंकि AI ने तां जी दिमाग बहुत ज़्यादा ले आंदा है, ते दिमाग लियान दे नाल साडियां नौकरियां या साडी आने वाली जनरेशन जिहड़ी ना उहनां वास्ते प्रॉब्लम हो जाणी है, जबकि इदां दा कुछ नहीं है जी। एक चीज़ मैं तुहानूं दसदी हां, सब तो ज़्यादा जरूरत है सिर्फ AI नूं समझण दी, क्योंकि बनाया तां अल्टीमेटली इंसान नहीं है ना AI भी, ते इस करके AI तो डरन दी जरूरत नहीं है। AI नूं यूज़ किद्दां करना है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं, सानूं उस चीज़ दे उत्ते काम करन दी जरूरत है। ते सब तो जरूरी चीज़ ये है कि असी जदों कुछ पुछ रहे हैं ना AI नूं, ते असी जो पुछांगे उन्हें सानूं उसे तरीके दा जवाब देना है। कोशिश करिए कि असी बहुत सीधा स्पष्ट पुछिए जो असी जानना चाहते हाँ, पर असी पुछदे कुछ होर ही हाँ, तो हुंदा की है कि फिर जो उन्हूं बेचारे नूं समझ आता है, क्योंकि है तो आफ्टरऑल मशीन ही ना, तो इस करके जो उन्हूं समझ आता है फिर वो ही दस दिंदा है। अच्छा, एक हादसे वाली चीज़ मैं तुहानूं दसांगी गाना चलाने तो पहला, क्योंकि गाने तो चलने हैं, बड़ी हादसे वाली चीज़ है अजकल ना, एक रील जिहड़ी है, एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के उत्ते, AI नूं लैके ही है। ते जी बीबियां की करदियां है कि एक लेडी ने अपनी वीडियो पाई, मैं स्क्रोल कर रही थी, तो मैं समझने की कोशिश की थी, और लिटरली मेरा हस हस के पेट दुखन लग गया उस वीडियो नू देख के। हुण AI है, तो AI की जो गल करते हैं असी, तो अजकल पिक्चर क्रिएट करन दा भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तुहानू सारयां नू पता होना है। वह लेडी ने अपने हसबैंड दे नाल खड़े होकर एक फोटो क्लिक की सी, तो उन्हें AI नू कहा कि जी मेरी तो मेरे हसबैंड की हाइट जिहड़ी है वह सेम है, मेरे हसबैंड नू थोड़ा जिहा लम्मा कर दो, ते उन्ने उदे हसबैंड नू 7 फुट लम्मा कर दिता। हुण तुसी अपने हसबैंड दी उहनां नू हाइट ही नहीं दसोगे कि इन्ने बाय इन्ने दा कर दिओ, भाई इन्ने इंच वधाणा है या इन्ने फीट दी हाइट करनी है, ते उहनूं तां भाई कुछ नहीं पता, फिर उहने तां बना देना जिन है कि नहीं। फिर उहनूं लग्गिया कि ज़्यादा ही लंबे हो गए ने, तुसी इदां करो, AI नू कहिंदी है कि तुसी इदां करो AI, तुसी तू ना इहनूं छोटा कर दे, ते फिर जदों उन्हें छोटा किया तो उन्हें उन्होंने 3 फुट का कर दिता। हुण उह कहे कि भी मेरा हसबैंड तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, कहिंदी तुसी इदां करो तुसी रहन दिओ इन्हां नूं मेरे वर्गे ही कर दिओ। ते फिर उस तो बाद इच की होया कि जदों उन्हें कहा मेरे वर्गे कर दिओ, तो उन्हें हसबैंड नूं सूट पवा के खड़े कर दिता। फिर परेशान हो गई अगली, फिर कहिंदी कि हुण मैं की करां, फिर कहिंदी इदां करो तुसी, तू AI नूं कहिंदी है कि तू इदां कर जिद्दां सीगे पहलां, तुसीं उदां ही करके दिओ मेरे हसबैंड नूं जिद्दां बिल्कुल पहलां सीगे। ते फिर उहने उहदे हसबैंड नूं 3 सालां दा कर दित्ता। ते फिर अखीर दे विच उहने दुखी होके उह फोटो ही डिलीट कर दित्ती।

0: रिजल्ट ही सही होवे। ऑफिशियल वैबसाइट चैक करो, एक बारी ऐप खोलो, कॉल करके वेरीफाई जब तक नहीं होंदिया सारिया चीज़ा, कोशिश करनी है कि अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जड़ी है वो किते भी शेयर नहीं करनी। ते थोड़ा जिहा केयरफुल होने की जरूरत है, जे कोई डरा रहा है, किसी ने कहा ओटीपी शेयर करना है फोन दे विच, जल्दी जल्दी देना सारी इन्फॉर्मेशन कदी शेयर नहीं करनी है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है हर एक लिसनर ने। जी हाँ, तो ये सारियां बहुत सारियां इंपोर्टेंट गल्लां जड़ियां कि मैं तुहाडे नाल करना चाहुंदी सी इस प्रोग्राम नैटवाणी दे विच। गल्लां बातां तां बहुत ने, पर फिर किसी दिन दोबारा तो जदों मैं इस सैगमेंट दे विच तुहाडे नाल मिलांगी तां जरूर शेयर करांगी ये सारियां गल्लां बातां। फिलहाल सुनदे हां इस सैगमेंट दा ये आखिरी गीत, तो मिलदे हां इस गीत तों बाद।
1: ਬਦਾਮਾਂ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉੱਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੈਰ ਕਰਦਾ, ਅੜਬ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ।
2: ਓਏ ਸਰਦਾਰ
3: ਜੀ,

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

तो लगा जैसे दुआ कबूल हुई, सोनी सी जिंदगी में फिर से बहार आई। अब हर शाम का एक ही मतलब है, तेरी याद आई और मुस्कान साथ लाई।

चांद भी आज कुछ ठहरा ठहरा सा है, चांद भी आज कुछ ठहरा ठहरा सा है, शायद उसे भी किसी का इंतजार है। हम तो हर रात तुम्हें सोचकर मुस्कुरा देते हैं, हम तो हर रात तुम्हें सोचकर मुस्कुरा देते हैं, यही हमारे इश्क का सबसे खूब

अर्ज किया है, कभी तुम पास बैठो तो जमाना भूल जाओ, कभी तुम पास बैठो तो जमाना भूल जाओ, मैं तेरी आंखों में खोकर हर फसाना भूल जाओ, मैं तेरी आंखों में खोकर हर फसाना भूल जाओ, तेरी बातों की खुशबू से महक उठती हैं ये सांसें, तेरी बातों की खुशबू से महक उठती हैं ये सांसें, तो छू ले प्यार से मुझको तो गम सारा भूल जाओ। सुन लिया एक बहुत ही खूबसूरत जा अगला ट्रैक, प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है।

तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। ऐसा वादा करो अब हमसे ना बिछड़ोगे कभी, ऐसा वादा करो कि हमसे ना बिछड़ोगे कभी। नाज हम सारे उठा लेंगे, तुम आओ तो सही।

किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी।